अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

आपने ट्यूनिंग किया है आकाशवाणी श्रीनगर का FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल DTH और हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के सिलसिले के तहत आज के दूसरे दिन का जो लेखा जोखा है और आज के दिन क्या कुछ होने वाला है श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के अंतर्गत, हम आप तक रेगुलर अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और हमें सुनते रहिए।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप इस वक्त सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना सर्विस DTH और हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। ओम का जो गुणगान आपने अभी सुना, इससे हमें यही सीख मिलती है, यही सबक मिलता है कि हमें अपने पालनहार, अपने भगवान या जिसको भी हम मानते हैं, हमेशा उसका आभारी रहना चाहिए, क्योंकि हम इस धरती पर जो कुछ हैं, अपने भगवान, अपने अल्लाह और जो कोई भी हमारा भगवान है या जिसको भी हम मानते हैं, उसी की वजह से हैं। इसी तरह से जो भगवान शिव हैं, उनका भी ये पैगाम हम सब के लिए था कि इंसान को सच्चाई, ज़ब्त नफ्स, हमदर्दी, फितरत के एहतराम और बातनी सुकून की तरफ रहनुमाई। और सभी मज़हबों का, सभी धर्मों का यही कहना है कि हर एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए, हर एक इंसान को दूसरे इंसान के दुख दर्द में उसका साथी बनना चाहिए। और यही कर्तव्य, यही फ़र्ज़ हम निभा रहे हैं, जो हमारे यात्रीगण इस वक्त हमसे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम बाबा भोलेनाथ की यात्रा के लिए आ रहे हैं, दर्शन के लिए आ रहे हैं। हमारे लिए जो सुख सुविधाएं, जो अरेंजमेंट्स यहाँ के प्रशासन, जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने किए होंगे, हमें उनसे कदाचित कोई परेशानी नहीं होगी। हमें हर एक मोड़ पर, हर एक कदम पर वो रहनुमाई करेंगे हमारी। और हमारी भी यही कोशिश है कि रेडियो की वसादत से, रेडियो के माध्यम से जो भी हमसे बन पड़ेगा, हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। आप हमसे मदद लेने के लिए, हमसे बात करने के लिए

0: अपनी कोई शिकायत, अपना कोई सुझाव, अपनी कोई भी दिल की बात हम तक पहुंचाने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी कोई बात हम तक पहुंचा सकते हैं, वो ज़रा नोट कीजिएगा। हेल्पलाइन नंबर है 9596990954। और हमारा जो ईमेल आईडी है जिस पर आप ईमेल करके हम तक अपनी कोई भी बात पहुंचा सकते हैं, वो है akashvanibaltal@gmail.com। जी हाँ, टेलीफोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर हम एक बार फिर से आपको बताते हैं, वो है 9596990954। ईमेल भी एक बार फिर से सुन लीजिए, akashvanibaltal@gmail.com। फील फ्री टू SMS और व्हाट्सएप अस ऑन दीज नंबर्स एंड ईमेल अस ऑन दीज नंबर्स। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात को इस प्रसारण का हिस्सा बनाएं। और इस प्रसारण का एक अहम हिस्सा जो हम दिन भर का जो लेखा जोखा होता है, जो ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन होती है, ताज़ा तरीन जानकारी होती है, वो आप तक पहुंचाते हैं। क्योंकि हमारा कर्तव्य और हमारा काम यही है कि आप तक ताज़ा से ताज़ा तरीन जानकारी पहुँचाएँ। और इसी सिलसिले के तहत हमारी घाटी के मुख्तलिफ इलाकों में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स, हमारे संवाददाता हमसे राबिते में होते हैं ताकि आप तक ताज़ा तरीन जानकारी वो पहुँचाएँ। और इसी सिलसिले की कड़ी के तहत हम सबसे पहले रुख करते हैं जम्मू का। जम्मू से जो हमारे संवाददाता जावेद मेहराब, इस वक्त हम उनसे राबिता
1: हमारा
0: करने
1: कॉल
0: की कोशिश कर
1: जावेद
0: रहे
1: आने को जा रहा
0: हैं।
1: है।
0: जैसे ही हमारा उनसे राबिता होता है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जावेद मेहराब जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदाब जावेद
1: आदाब जी, आदाब, आप ठीक हैं
0: जी। दुआएं करम और यही कामना करते हैं, यही हमारी अपेक्षा है कि हमारे जो सभी यात्रीगण हैं जो कल से वादी की तरफ आ रहे हैं, बल्कि 2-3 दिनों से वादी की तरफ आ रहे हैं, वो भी ठीक ठाक होंगे।
1: बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत। यहाँ पवित्र यात्रा, पवित्र बाबा बर्फानी के दर्शन की शुरुआत के साथ ही मैं कहूँ तो शहर में उत्सव का माहौल बन गया
0: जी
1: है। चारों तरफ बम बम बोले और हर हर महादेव के जयघोष गूंज रहे हैं। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर न सिर्फ प्रशासन बल्कि जम्मू के स्थानीय लोग और व्यापारी भी पलके बिछाए बैठे हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रद्धालुओं के स्वागत में जम्मू शहर का जर्रा जर्रा शिव भक्ति के रंग में सराबोर नजर आ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर यात्री निवास भगवती नगर तक श्रद्धालुओं को के लिए जगह जगह लोगों की व्यवस्था की जा रही है। स्थानीय लोग श्रद्धालुओं की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भगवती नगर तवी रिवर फ्रंट के आसपास का नजारा भाईचारे के रूप में देखने को मिल रहा है।
0: जी
1: मुस्लिम, सिख, हिंदू सभी समुदाय के लोग मिलकर, मैं बताऊं तो यात्रियों के ठहरने, पानी पिलाने और रास्तों की जानकारी देने में दिन रात मदद कर रहे हैं। स्थानीय लोग ये मान रहे हैं कि श्रद्धालुओं की खुशी और उनके चेहरों की मुस्कान उनकी सबसे बड़ी पूंजी है और यही भाईचारा इस पावन यात्रा की सबसे बड़ी ताकत है, मैं कहूं तो। क्योंकि स्थानीय लोगों का जो जुड़ना यात्रा के साथ है, यही जो सरकार की जो जो मदद है उसको और दुबला करती है, तो
0: जी
1: यही सबसे बड़ी ताकत है, मैं कहूं तो। लोगों का भी कहना है कि जब तक वो पवित्र यात्रा चलेगी, यहाँ की मेहमान नवाजी और सद्भाव यात्रियों के लिए हमेशा कायम रहेगा। मैं बताऊं तो याद रहे कि हर साल यहाँ सेवादार पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा का इंतजार करते हैं और श्रद्धालुओं के लिए खूब खिदमत अंजाम दे रहे हैं। याद रहे कि इस बीच सुरक्षा के भी कड़े इंतजामात किए गए हैं। उत्सव को के इस माहौल के बीच प्रशासन सुरक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है।
0: जी
1: भगवती नगर कैंप के अलावा पूरे शहर में सुरक्षा के बड़े प्रबंध किए गए हैं। जगह जगह पर चेकिंग पोस्ट बनाए गए हैं और सीसीटीवी कैमरा के जरिए हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। इसी दौरान स्थानीय ऑटो और टैक्सी चालकों ने यात्रियों के लिए स्पेशल मदद का ऐलान किया है ताकि किराए और रास्तों को लेकर कोई परेशानी ना हो। बाजारों में दुकानदारों ने हर मदद देने का न सिर्फ विश्वास दिलाया है
0: बिल्कुल
1: बल्कि श्रद्धालुओं की सेवा के लिए भी कई स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें पानी पिलाने, उसके अलावा जो लंगर चलता है
0: जी जी
1: वो जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग एक अलग तरह का उत्सव

0: देखने को मिल रहा है।
1: जी
0: शहर
1: जी
0: के विभिन्न धर्मशालों, धार्मिक सभाओं और मंदिरों में भी इन दिनों रौनक देखने को मिल रही है। सुबह से ही शहर के विभिन्न कोनों से पूजा, आरती, सत्संग की गूंजे सुनाई दे रही हैं। और इस दौरान प्रशासन ने एक और ऐलान भी किया है कि स्मार्ट सिटी बस में श्रद्धालुओं को यहाँ के जो पर्यटन से रूबरू कराने भी जा रही है,
1: जी
0: और उसके लिए

0: हालांकि कल दिन भर धूप रही और श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों, सेवादारों और जो ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी थे उनके पसीने भी छूटे, लेकिन उत्साह, जोश और बाबा बर्फानी के दर्शन करने का की जो उत्साह है वो बराबर जारी है। और आज भी मैं बताऊं तो आसमान साफ है। सुबह यहाँ भगवती नगर के बेस कैंप से 4,812 यात्री दोनों रास्तों से यहाँ दर्शन के लिए निकल चुके हैं, और उसके साथ साथ जो बालटाल का रास्ता है वहां से लगभग 2,014 यात्री बालटाल के रास्ते से पवित्र गुफा की तरफ जा चुके हैं, और पहलगाम के रास्ते से 2,771 यात्री इस पवित्र गुफा की तरफ निकल चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है। हर दिन का ये एक चैलेंज होता है मैं बताऊं तो, क्योंकि जो यात्रियों को भेजना भी एक बहुत बड़ी एक ड्यूटी है, जिसमें किस तरह से उनका मेडिकल चेकअप, आरआईएफडी कार्ड, वो सारी चीजें, सारी प्रक्रियाएं जो होती है, वो सारी प्रक्रियाओं का खास ध्यान देकर बेस कैंप पहुंचाया जाता है यात्रियों को, उनकी डेट के मुताबिक ही उन्हें आगे फिर पवित्र गुफा की तरफ ले जाया जाता है। तो एक बहुत बड़ा उत्सव है जम्मू में, बताऊं तो कुल मिलाकर जो मैं इसको अभी तक अध्ययन कर चुका हूं। जी,
1: इसका मतलब कि जो जम्मू का इलाका है, खासकर जो भगवती नगर इलाका है, इसमें लोगों में काफ़ी उत्साह है, और हम ये उम्मीद करते हैं, कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि ये उत्साह कम नहीं होना चाहिए। जब तक यात्रा है तब तक इस जोश में, इस वलवले में और इस खिदमत में हमसे कोई कमी नहीं रहनी चाहिए।
0: बहुत बहुत सही बात कही आपने। भगवती नगर, तवी रिवर फ्रंट और विभिन्न जो ट्रांजिट कैंप्स हैं उनके अलावा बाजारों में भी पिछले दो दिन से जो तीर्थ यात्री हैं वो अच्छी तरह घुल मिल रहे हैं और अच्छी तरह अपना यहाँ जम्मू की भी सैर कर रहे हैं और साथ साथ अपनी डेट का इंतजार भी कर रहे हैं और निकलने के लिए तैयार भी हैं।
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, और सुबह सुबह हम आपसे बात करते हैं। दिन की शुरुआत आपने एक खुशखबरी से दी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।
0: बहुत शुक्रिया।
1: ये थे हमारे जम्मू के संवाददाता जावेद मेहराब, जिन्होंने एक पॉजिटिव मैसेज दिया, एक अच्छा पैगाम दिया हमारे लिए, हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे यात्रियों के लिए। और हम अपने जो मेहमान हैं, हमारे यात्रीगण हैं, उनसे ये कहना चाहेंगे कि हम तहे दिल से, खुले मन से आपके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं, आपके जो स्वागत के लिए, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और जहाँ तक बात इन्होंने भगवती नगर जम्मू की और इनकी बातें सुनकर हमें ये लगा कि जो हमारे लोकल जो हैं हेल्पर्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या हेल्थ से रिलेटेड जो स्टाफ है, वो अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रख रहे हैं, और हम आगे भी उनसे यही उम्मीद रखेंगे कि इस जोश, इस वलवले और इस खिदमत में आगे कोई कमी नहीं आनी चाहिए। फ़िलहाल के लिए आप हमारा ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए, हम जल्दी ही हमारे जो बानिहाल के संवाददाता हैं मोहम्मद तस्कीन, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।

पहली बार सुन रहे हैं, आपका तहे दिल से इस इन्फॉर्मेशन और जो भी आपने हम तक जानकारी पहुंचाई उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आगे भी बात होती रहेगी। हमारे साथ जुड़े थे हमारे बानिहाल के संवाददाता मोहम्मद तस्कीन, जिन्होंने चलते चलते हम तक एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई कि जो कल बारिशें हुई राष्ट्रीय राजमार्ग पर, उसकी वजह से जो मौसम में गर्माहट थी, जो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था पिछले कई दिनों से, उसमें कहीं हद किसी हद तक जो गर्मी है उसमें यात्रियों को और आम लोगों को राहत मिली। और खुशी की बात ये रही कि किसी तरह का जो उससे प्रभाव है वो गाड़ियों पर या चलने फिरने वाले वाहनों पर नहीं पड़ा। आप सुन रहे हैं विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी अपने जो मुख्तलिफ संवाददाता हैं वादी के मुख्तलिफ भागों में, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप तक ताज़ा से ताज़ा जानकारी हम पहुंचाते रहें।

0: जी श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। और श्री अमरनाथ जी जो यात्रा जो है, ये सिर्फ़ एक मज़हबी सफ़र नहीं है, बल्कि रूहानी बेदारी, हमारे ईमान, सब्र, खिदमत और इंसानी यकजहती का एक अजीम पैगाम हम तक पहुंचाती है, जो सभी धर्म, सभी मज़हब इस दुनिया के हम तक पहुंचाते हैं। और हमारा कर्तव्य यही है कि हम अपने जो मज़हबी असूल हैं उन पर चलने की, उनको कायम रखने की कोशिश करें। ये यात्रा हमें ये भी सिखाती है कि मज़बूत ईमान इंसान को हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देता है, और इसका एक सबूत हम तक इस बात से पहुंच सकता है कि आप देखते हैं कि जो हमारी जो यात्रीगण हैं उनमें काफ़ी बुज़ुर्ग महिलाएं, पुरुष और नन्हे मुन्ने बच्चे जो आते हैं इस यात्रा को करने के लिए, उनमें कितना जोश, उनमें कितना जज्बा होता है ये देखे बगैर कि रास्ता कैसा है, इंतज़ाम कैसे हैं, लेकिन उनके दिलों में, उनके हृदय में बस ये होता है कि हर मुश्किल के बाद एक आसानी है। और उनका ईमान, उनका जो जज्बा है वो इससे मज़बूत होता है। ये सफ़र सब्र, नज़्म ज़ब्त और साबित कदमी की एक अहमियत को उजागर करता है। हमें हर एक चीज़ में सब्र करने की सीख दी गई है, और ये सीख हमें अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करनी चाहिए हर एक मोड़ पर ज़िंदगी में, चाहे हम सुख में हों या दुख में हों, हमें हर वक्त सब्र का मुजाहिरा करना चाहिए। फ़िलहाल हम चलते हैं हमारे जो श्रीनगर के संवाददाता है इमरान नायकू, उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पास हमारे लिए क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। जब तक हमारा उनसे राबता होता है, हम अपने जो बातों का सिलसिला है वो जारी रखते हैं। श्रोताओं, जो बाबा बर्फानी के दर्शन करने आते हैं उनमें अकीदत, आजजी और अपने पालनहार की जो कुर्बत है उसकी एक अलामत दिखती है, उसमें उनका एक जज्बा होता है। वो इसी कोशिश में होते हैं कि अपने भगवान, अपने पालनहार से वो और करीब हो जाएं। हमारे साथ हमारे श्रीनगर के संवाददाता इमरान नायकू जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। आपका स्वागत है इमरान। इमरान, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
1: जी, बहुत शुक्रिया। चूंकि अमरनाथ जी यात्रा आज तीसरा दिन है और आज भी हम देख रहे हैं कि जहाँ तक श्रीनगर का ताल्लुक है, श्रीनगर शहर में यहाँ जो यात्रियों के लिए सुविधाएं रखी गई है ट्रांजिट के पांथा चौक में, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर साल की तरह इस साल भी यात्रा बेहतर और खूबसूरत अंदाज से यहाँ और पूरा मन तरीके से यात्री यहाँ से पवित्र दर्शन के लिए निकले। और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर यात्रियों के लिए अरेंजमेंट्स रखे गए। आज भी यहाँ कई सारे जो अमरनाथ जी यात्री हैं, जिनमें साधु, साध्वी और कई जो मर्द और ख्वातीन शामिल हैं, वो पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। और इसके अलावा कल शाम को भी यहाँ यात्री जो है वो जम्मू से पहुंचे, जिन्होंने नाइट स्टे यहाँ पे किया और सुबह उन्हें यहाँ से पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया, जिसमें सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए थे और कॉन्वॉय के बीच में इन यात्रियों को रवाना किया गया। आज भी मौसम बिल्कुल सुहाना है और इस वक्त शहर में धूप खिली हुई है, ठंडी हवाएं भी चल रही है और मौसम की पेशेंगोई भी बेहतर ही दी गई है। ओवरऑल जहां तक श्रीनगर में

0: यात्रा को लेके हम बात करें, आज भी हम देख रहे हैं कि यात्री जो है वो पवित्र गुफा के दर्शन के लिए निकले हैं। वहीं देखा जाए तो यात्रियों के लिए
1: जी
0: हम देख रहे हैं कि यहाँ हर तरह की सुविधाएं, हर तरह की फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई है, वो चाहे सैनिटेशन हो, वो चाहे पीने के पानी की फैसिलिटी हो, वो चाहे कोई किसी यात्री की कोई ग्रीवेंस हो या उन्हें किसी की कोई असिस्टेंस की जरूरत हो,
1: जी
0: तो उस तरीके के यहाँ पे काउंटर जो है गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं। यहाँ श्राइन बोर्ड का जो अमला है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो एहलकार
1: एहलकार
0: है,
1: हैं
0: या
1: जी।
0: फिर यहाँ पे देखा जाए पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी और दीगर जो सिक्योरिटी इदारों के जो अमला है, यहाँ पे दिनों रात अपनी जो ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। सीसीटीवी कैमराज यहाँ पे इस ट्रांजिट कैंप के इर्द गिर्द जो है वो
1: नस्ब किए गए हैं
0: इंस्टॉल
1: जी।
0: किया गया है। सो ओवरऑल यात्रा आज दूसरे दूसरे दिन में हम देख रहे हैं, या तीसरे दिन, चूंकि आज तीसरा दिन है जब से यात्री कश्मीर वारिद हुए हैं,
1: जी
0: तो बड़े ही पुरअसन और पुरअमन तरीके से जारी है। और खासकर श्रीनगर शहर से यात्रियों की जो आमद और रवानगी है वो आज भी मुसलसल जारी है।
1: जी जो ट्रांजिट कैंप पांथा चौक में है, क्या वहाँ पे जो RFID कार्ड्स हैं वो देने का कोई इंतज़ाम रखा है प्रशासन ने?
0: जी, अगर आपने देखा होगा कि पहले से ही 2 दिन पहले रीजनल कमिश्नर कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने यहाँ ट्रांजिट कैंप का विजिट किया। बैक टू बैक उनके विजिट्स थे और उसमें उन्होंने RFID कार्ड की जो फैसिलिटीज है उसका भी उन्होंने वहाँ पे यहाँ पे जायजा लिया था और एंश्योर किया था कि किसी तरह की किसी यात्री को कोई दिक्कत ना हो। और हर साल की तरह इस साल भी RFID कार्ड की फैसिलिटीज को गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है और यही कोशिश है कि किसी यात्री को कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ये सिर्फ RFID कार्ड की फैसिलिटीज नहीं है बल्कि हर तरीके की जो यात्री को, जैसे मैंने कहा कि एक काउंटर यहाँ पे सेटअप किए गए हैं
1: जी
0: जिसमें अगर किसी यात्री को कोई प्रॉब्लम हो या किसी तरह की कोई असिस्टेंस की जरूरत हो तो वो वहाँ पे फिजिकली जा सकते हैं और वहाँ पे जो है उसका हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फैसिलिटीज भी गवर्नमेंट ने रखी है और श्राइन बोर्ड वेबसाइट पे बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई। टोल फ्री नंबर यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने दिया हुआ है ताकि उस पर भी वो कांटेक्ट कर सके। और इसके अलावा जैसे कल भी मैंने कहा था कि जो श्रीनगर में सबसे अहम जो फैसिलिटी यात्रियों के लिए है वो है जो ICCC यहाँ HMT इलाके में एस्टैब्लिश किया गया है
1: जी
0: गवर्नमेंट। ये पहली बार नहीं बल्कि कई सालों से यहाँ जिससे इस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से पूरी यात्रा को मॉनिटर किया जा
1: मॉनिटर
0: रहा है,
1: किया जाता
0: वेदर
1: है
0: मॉनिटर किया जा रहा है,
1: जी।
0: यात्रियों के जो ट्रैक्स से गुजरने के वो जो है मॉनिटर किए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे रूट्स है वो मॉनिटर किए जा रहे हैं,
1: जी
0: जहाँ पे बैंकर सेटअप किए गए वो मॉनिटर किए जा रहे हैं, जहाँ पे भी लंगर कायम किए गए हैं वो मॉनिटर किए जा रहे हैं। ओवरऑल की इस ICCC से पूरी यात्रा है इसको मॉनिटर किया जा रहा है और बुनियादी मकसद यही है कि जो श्रद्धालु, जो यात्री आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई मुश्किल ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। इन केस अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है तो यहाँ से विद इन नो टाइम इस ICCC से जो मोर देन 25 डिपार्टमेंट्स के जो एहलकार यहाँ पे लगे हुए काम पे और एक मॉनिटर के जरिए से सारी मॉनिटरिंग की जा रही है इस यात्रा को, तो विद इन नो टाइम डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उस प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉर्ट आउट करते हैं। सो वो चाहे RFID फैसिलिटीज हो या फिर फिजिकल हेल्प की फैसिलिटीज हो, वो चाहे वो खाने पीने की फैसिलिटीज हो, पीने के पानी की फैसिलिटीज हो,
1: जी
0: वो चाहे सैनिटेशन का निजाम हो, हर ये या लंगर का एहतमाम हो, हर तरह की फैसिलिटीज खासकर श्रीनगर ट्रांजिट कैंप में गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई है।
1: जी जो आपने अभी टोल फ्री नंबर का जिक्र किया है, क्या आपके पास वो नंबर अभी मौजूद है ताकि हम अपने श्रोताओं तक वो नंबर पहुंचा सकें हैं और वो उसका जो उसकी जो मदद है वो ले सकें?
0: दरअसल गवर्नमेंट ने जो टोल फ्री नंबर से अपनी जो वेबसाइट है श्राइन बोर्ड की उस पे वो टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। अलबत्ता मैं वो टोल फ्री नंबर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा।

0: गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल असिस्टेंस या रजिस्ट्रेशन या यात्री की कोई भी इंक्वायरी हो तो
1: जी
0: उसके लिए जो टोल फ्री नंबर है 1800-1807-199, ये श्रीनगर के लिए, और जम्मू के लिए जो नंबर दिया गया है 1800-1807-198। दोबारा से मैं इसको दोहराना चाहूंगा,
1: जी जी जी
0: जो श्राइन श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने जो टोल फ्री नंबर दिया है श्रीनगर के लिए 1800-1807-199, और जम्मू के लिए जो टोल फ्री नंबर है 1800-1807-198। और इसके अलावा अगर सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन के लिए कोई क्वायरी हो यात्रा की तो 1464 पर भी वो रब्ता कर सकते हैं।
1: अच्छा जी इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए, और ख़ुसूसी शुक्रिया जो टोल फ्री नंबर्स आपने हम तक अभी शेयर किए हैं, जिनकी मदद से जो श्रोता हमारे जो यात्रीगण हैं वो किसी भी चीज़ की सहायता, किसी भी मुश्किल में हमसे सहायता तलब कर सकते हैं, और हम उनकी खिदमत के लिए हमेशा हाज़िर रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे श्रीनगर के संवाददाता इमरान नायकू जुड़े हुए थे, जिन्होंने हम तक दो टोल फ्री नंबर्स पहुंचाए। आपने नोट किए होंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से उनको आपके लिए दोहराना चाहेंगे। ये जो श्रीनगर में हमारे जो यात्रीगण हैं, अगर उनको किसी तरह की कोई तकलीफ़ हो, कोई शिकायत हो, कोई मसला हो, तो वो हमारे वो जो गवर्नमेंट की तरफ से शाया किए गए हैं टोल फ्री नंबर्स, उन पर रब्ता कायम करके अपनी मदद ले सकते हैं। वो श्रीनगर के लिए टोल फ्री नंबर रहेगा 1800-1807-199, और जम्मू के लिए इसी तरह का टोल फ्री नंबर रहेगा। जो जम्मू में हमारे यात्रीगण रुके हुए हैं या जो आने वाले हैं, वो भी ये टोल फ्री नंबर अपनी डायरीज़ में नोट करके रखें। टोल फ्री नंबर है 1800-1807-198। सुनते रहिए विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026।

0: अलावा जो कोटा बच जाता है हमारे पास फॉर अ पर्टिकुलर डे, उनको ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के जरिए यात्रा की तरफ रवाना किया जाता है। पर चूंकि हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और बहुत ज्यादा गिनती में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं, उनके लिए भी एक टोकन सिस्टम की व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग ने की है, ताकि उनको भी सीक्वेंशियली टोकन अलॉट किए जाएं फॉर द नेक्स्ट 2, 3, 4, 5 डेज, ताकि वो लोग भी अपने डेज जिस दिन का उनको टोकन मिला है उस दिन ही यहाँ पर आए और रोज रोज उनको यहाँ पर किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बेस कैंप के अंदर भी लंगर की व्यवस्था इलेबोरेट की गई है। 2500 यात्री हमारे कल वहां रुके थे, आज की कॉन्वॉय भी जम्मू से पहुंच चुकी है और वो यात्री हनुमान बेस कैंप पे पहुंचे और वहां पर उसी तरह की व्यवस्थाएं हैं। शहर के अंदर भी विभिन्न जगहों पर भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स लगातार काम कर रही हैं। आप देख रहे हैं सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम हैं ताकि किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस यात्रियों को ना। यात्रियों के लिए मेरा वही संदेश है जो अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने भी बार बार दिया है कि हर एक यात्री की यात्रा सफल रहे उसके लिए बोर्ड और प्रशासन पूरी तरह से कार्यरत है। जिस तरीके से फ्लो रेट यात्रा का रहेगा और जो कैरिंग कैपेसिटी रहेगी उस हिसाब से हमारी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को जल्द से जल्द बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए हम रवाना कर सकें। लेकिन कैरिंग कैपेसिटी एक लिमिटेड नंबर है, उस नंबर से ज्यादा बिल्कुल भी यात्री छोड़े नहीं जा सकते, उस कैरिंग कैपेसिटी के अंदर ही छोड़े जाएंगे। हाउएवर आने वाले दिनों में अगर जो ऑनलाइन रजिस्टर जिन्होंने किया है अगर उनकी संख्या में कोई कमी आती है और हमारे पास ज्यादा स्कोप रहता है तो हम ज्यादा यात्रियों को ऑन स्पॉट रजिस्टर करेंगे। मिसाल के तौर पर बात करें तो आज अगर हमने 1000 या जब कल हमने सिर्फ 1000 यात्रियों को ऑन स्पॉट रजिस्टर किया, आज तकरीबन 2000 यात्रियों को ऑन स्पॉट रजिस्टर किया जा रहा है और हो सकता है कल ये संख्या 2 से बढ़कर 2500 हो या 2000 से ज्यादा ही हो। तो ये मैं समझ सकता हूँ एक इंक्रीजिंग ट्रेंड हमें आने वाले दिनों में मिलेगा ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के कोटा का, जो कि मैं समझता हूँ जिस जो ये भीड़ बिना रजिस्ट्रेशन के आई है उन सबको हम अकोमोडेट कर पाए। ऑपरेशन मैं समझता हूँ और पेशेंस भी मैं समझता हूँ, क्योंकि यात्रा और पिलग्रिमेज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारी श्रद्धा और हमारी पेशेंस रहती है और वो पेशेंस की मैं अपील हम सभी यात्रियों से करूंगा और ये भरोसा भी दिलाना चाहूंगा कि प्रशासन की तरफ से पूरे भरसक प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस यात्रियों को ना।
1: शुक्रिया।
0: बगैर रजिस्ट्रेशन के लिए ही ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और उसकी काउंटर्स की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। हाउएवर उनकी प्रायोरिटी प्री रजिस्टर्ड यात्रियों के बाद आती है, तो जिन्होंने पहले अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर किया है सबसे पहले उनको कार्ड इशू किए जाते हैं, उसके बाद जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो अपना मेडिकल चेकअप कराते हैं, EKYC दर्ज कराते हैं और उसके बाद उनको रजिस्टर किया जाता है। ऐसा है कि ये एक पब्लिक इंफॉर्मेशन है और बार बार एडवाइजरी के जरिए बताया जा रहा है कि आप ऑनलाइन रजिस्टर करें और मार्च से देश भर में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के द्वारा चल रही है और ये आज की प्रक्रिया नहीं, पिछले कई सालों से ये प्रोसेस काफी स्ट्रीमलाइंड है और सभी लोग रजिस्टर करते हैं। हाउएवर शायद कुछ लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाई है और वो लोग पहुंचे हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एज टूरिस्ट यहाँ पहुंचे थे, उनकी यात्रा करने की इच्छा हुई है तो वो भी श्रद्धालुओं की कैटेगरी में ऐड हुए हैं। हाउएवर हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि हमने ट्रांजिट हब्स की कैपेसिटीज में भी वृद्धि की है, तकरीबन 80,000 की हमारे पास अकोमोडेशन कैपेसिटी हमने मेंटेन की है सभी वेरियस ट्रांजिट कैंप्स में, चाहे वो श्रीनगर की बात करें, गांधरबल की बात करें, बांडीपुरा हो, अनंतनाग हो, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में वो कैरिंग कैपेसिटी हमने मेंटेन की है इन्हीं सब इवेंचुअलिटीज का ख्याल रखते हुए और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम सभी श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए रवाना कर सकें।
2: जी, ये थे श्रीनगर के डिविजनल कमिश्नर श्री अंशुल गर्ग, जो पहलगाम में कल उन्होंने दौरा किया और जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाई कि किस तरह से इंतजाम हैं प्रशासन और जो श्री अमरनाथ जी यात्रा श्राइन बोर्ड है उनके क्या कुछ इंतजाम हैं जो हमारे यात्री अभी वादी में हैं या जो आगे आने वाले हैं, किस तरह से उनकी रजिस्ट्रेशन होती है और क्या प्रोसेस रहता है रजिस्ट्रेशन का, हम तक इन्फॉर्मेशन जानकारी पहुंचा रहे थे और हमारा ये कर्तव्य, हमारा ये फ़र्ज़ है कि आप तक ये जानकारी पहुंचाएं कि कृपया करके जो हमने आपके समक्ष एक हेल्पलाइन नंबर दिया था जिस पे हम सिर्फ आपके व्हाट्सएप मैसेजेस को इंक्लूड कर पाएंगे, उस पे कृपया करके कॉल ना करें, आप उस पे SMS करें, आप उस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम ज़रूर आपकी मैसेजेस को, आपके जो ईमेल्स हैं उनको इस प्रसारण का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सुबह के 8 बज रहे हैं, हमारी बातें तो बहुत हो चुकी हैं, अब आकाशवाणी दिल्ली चलते हैं जहां से हम हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में खबरें सुनेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में मियामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमी कंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा

0: बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक वित्तीय तकनीकी निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मोसल्ला में आयतुल्ला अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई

0: देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन टैंक मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में मियामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव 268.81 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़।

0: किया है। फीफा आलमी कप में अर्जेंटीना मियामी में कैबो वर्डे को एक सनसनीखेज मैच में 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में दाखिल हो गया है। मिस्र भी प्री क्वार्टर फाइनल्स में दाखिल हो गया है। और आज शाम मैनचेस्टर में दूसरी T20 में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक रोजा दौरे पर जाएंगे। पहले वो राजस्थान जाएंगे, जहां वो आज सुबह जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद जनाब मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वो आज दोपहर तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के लिए वक्फ करेंगे, इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों पर तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपए की लागत आई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: उम्मीद है कि रियासत के मगरबी ज़िलों में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से सरमायाकारी, रोज़गार और सनअती तरक्की के नए मौके पैदा होंगे। राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट से MSMEs, पैकेजिंग, कपड़े की सनतों, आटो कलपुर्जों और एग्री फिल्म जैसे शोबों को भी फ़रोग हासिल होगा, जिससे रियासत की मईशत में एक नई तकवियत पैदा होगी। ये प्रोजेक्ट राजस्थान के चैलेंजिंग सहरा में बनाया गया है, जो इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले से शुमाल जनूब राहदारी, खासतौर पर शहर की कसीर मॉडल कनेक्टिविटी को फ़रोग हासिल होगा। इस राहदारी से मेट्रो ट्रेन हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल से मरबूत हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के इस प्रोग्राम के रवां टेलीकास्ट के लिए रियासत के सभी ज़िला सदर दफ्तरों, शहरी बलदियाती इदारों और ग्राम पंचायतों में खसूसी इंतजाम किए गए हैं। जोधपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: बाद में शाम को वज़ीर-ए-आज़म मोदी गुजरात का दौरा करेंगे। यहां वो अहमदाबाद के सनंद इलाके में बाहर से मंगाए गए CG सेमीकंडक्टर के कलपुर्जों के तरतीब और तजुर्बाती मरकज का इफ्तिताह करेंगे। ये इफ्तिताह भारत के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के सफर में एक अहम संगे मील है, जिसके तहत भारत के पहले शुरू से आखिर तक चिप पैकेजिंग यूनिट में कमर्शियल प्रोडक्शन का आगाज हो जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: बाहर से मंगाए गए CG सेमीकंडक्टर के कलपुर्जों के तरतीब और तजर्बाती मरकज OSAT से एक खुद कफील टेक्नोलॉजी इको निज़ाम की जानिब भारत के सफर में एक बड़े संगे मील की अक्कासी होती है। इस यूनिट में मसनू जहानत और आला कारकर्दगी वाली कंप्यूटिंग के शोबों में तेजी से तरक्की हुई है। ये यूनिट एडवांस्ड मेमोरी और स्टोरेज के लिए आलमी मांग को पूरा करने के मकसद से कायम किया गया है। सनंद में ज्यादा पैदावार से अहम सनतों में आलमी और घरेलू सारफीन को बराह रास्त फायदा होगा। इन सनतों को ऑटोमोटिव, सनती खुदकारी, 5G मवासलात और इंटरनेट ऑफ थिंग्स शामिल है। अहमदाबाद से अपर्णा खुन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: गुजरात के इंसदादे दहशतगर्दी दस्ते ATS ने पाकिस्तान में कायम ममनुआ दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। इन अफराद को गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से कल एक साथ की गई कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS के मुताबिक मुलजमीन पाकिस्तानी आकाओं के राबते में थे और अपनी दहशतगर्दाना सरगर्मियों को मजीद तौसी देने के लिए गुजरात में एक सरगर्म नेटवर्क कायम करने के लिए जैश ए मोहम्मद की जानिब से सरगर्म अमल थे। ये अफराद जैश ए मोहम्मद के नुक्ते नजर की तशहीर के लिए उनके मवाद को गुजराती जबान में तर्जुमा करने का काम भी कर रहे थे। कौमी राजधानी में अब तक 1,02,000 से ज्यादा शुमारियाती फॉर्म्स डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं। दिल्ली के आला इंतखाबी अफसर के दफ्तर के मुताबिक दिल्ली में इंतखाबी फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी के अमल के हिस्से के तौर पर तकरीबन 33,14,000 फॉर्म्स तकसीम किए गए हैं। दिल्ली में घर घर जाकर शुमारियाती फॉर्म्स तकसीम करने का काम फिलहाल जारी है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत $1 ट्रिलियन की बरामदात के अपने निशाने को हासिल करने की तरफ बढ़ रहा है, जिसके तहत रवां माली साल की पहली सहमाही में तकरीबन 15% सालाना बरामदात का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। कल नई दिल्ली में तिजारती मीटिंग के बोर्ड से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि इस निशाने को हासिल करने के लिए अशिया की बरामदात में इजाफे की जरूरत होगी। ये बरामदात अभी तकरीबन 480 अरब अमरीकी डॉलर्स की हैं, जिसमें इजाफा करके इन्हें तकरीबन 530 अरब अमरीकी डॉलर मालियत का किया जाएगा। جبکہ خدمات کی برآمدات میں سر دست تقریباً 421 ارب ڈالر کی مالیات میں اضافہ کر کے اسے تقریباً 470 ارب امریکی ڈالر کی

किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह और ज़रात और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने एलनिनो की वजह से मुल्क के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश और इसके असरात से मुतालिक सूरत हाल का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत मुल्क के कुछ इलाकों में एलनिनो की वजह से मामूल से कम बारिश और खुश्क साली के इम्कानी हालात से मुतालिक सूरत हाल पर लगातार करीबी नजर रख रही है। उन्होंने ज़राअत की वजारत और मुतालिका वजारतों को हिदायत दी कि वो चौकन्ना रहें और रियासती सरकारों के साथ तालमेल रखें ताकि किसानों को सही फसल बोने के बारे में मशवरा दिया जा सके। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि सहाफत को सदाकत, मोतबरियत और आला तरीन पेशावराना मेयारात पर अहदबस्ता रहना चाहिए। कल नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर्स वीकली के 80वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि जब मीडिया मुत्तला करता है, सवालात करता है और मोतबरियत बरकरार रखते हुए अवामी मुबाहिसे को फरोग देता है तो जमहूरियत को फरोग हासिल होता है। जम्मू कश्मीर में सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में हर रोज हजारों यात्री पहुंच रहे हैं। इस मौके पर अकीदतमंदों, सयाहों और मकामी लोगों के लिए नई दिलचस्प सरगर्मियां शामिल की गई हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने तवी दरिया के किनारे कश्ती की सहूलत शुरू की है। इसके अलावा पैडल वाली कश्तियां, राफ्ट्स, मोटरबोट्स और शिकारा की सहूलियात से भी यात्री लुत्फानंदोज हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कल सालाना अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 12,168 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। डिप्टी कमिश्नर और सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट्स ने बालतल के दो बेस कैंपों से यात्रियों को 3,880 मीटर बुलंदी पर वाकई पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें यात्रियों से अपील की गई है कि वो पेशगी इंदराज के बाद उनके लिए मखसूस की गई तारीखों पर ही पवित्र गुफा के दर्शन के लिए जाएं। ईरान में साबिक रूहानी पेशवाए आजम आयतुल्ला सैयद अली खामनई की सरकारी तौर पर 6 रोजा आखिरी रसूम की तैयारियां जारी हैं। ईरान के सीनियर रहनुमा, फौजी कमांडर्स और गैर मुल्की शख्सियतों ने आयतुल्ला अली खामनई को ईरान के मुसल्ला अजीम में खराज अकीदत पेश किया। बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और खारिजी उमूर के वजीर ममलिकत पवित्रा मार्गरीता ने आखिरी रसूम में शिरकत की। उनके जसद खाकी का जुलूस अगले कुछ दिन तक जारी रहेगा। इसके बाद मुकद्दस शहर मशहद में इस महीने की 9 तारीख को उनकी तदफीन कर दी जाएगी। सरकारी तौर पर यह सोग 40 दिन तक जारी रहेगा। भारतीय आला इंतखाबी कमिश्नर जनाब ज्ञानेश कुमार आज 2 रोजा दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। ओहदा संभालने के बाद उनका यह रियासत का पहला दौरा होगा। पहले दिन वो इंदौर पहुंचेंगे जहां वो बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। दौरे के दूसरे दिन जनाब कुमार ओमकारेश्वर और महेश्वर के मजहबी और तारीखी मकामात जाएंगे। आयुर्वेदिक उलूम में तहकीक के मरकजी कौंसिल CCRAS ने कल नई दिल्ली में अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की 5वीं मीटिंग मुनाकिद की। मीटिंग आयुष वजारत के सेक्रेटरी वैद्य राजेश कोटेचा की सदारत में मुनाकिद की गई। वजारत ने बताया कि मीटिंग शवाहिद पर मबनी आयुर्वेद तहकीक के इको निज़ाम को मुस्तहकम बनाने की जानिब एक अहम कदम है। इस इको निज़ाम में आयुर्वेद की तालीम, तहकीक, साइंसी मवासलात और डिजिटल हुक्मरानी को फरोग देने के मकसद से 3 बड़े इकदाम किए गए हैं। CCRAS के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर रवि नारायण आचार्य ने कहा कि कौंसिल शवाहिद पर मबनी आयुर्वेद तहकीक के इको निज़ाम की तामीर का पाबंद है जिससे आयुर्वेद को आलमी सतह पर मकबूलियत हासिल होगी। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मगरबी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में शदीद से शदीद तर और कहीं कहीं पर इंतहाई शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी तरह मशरकी राजस्थान, मशरकी मध्य प्रदेश, साहिली कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी अगले 2 दिन के लिए शदीद से शदीद तर बारिश की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। इस दौरान आज दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का इम्कान है। IMD ने कल दर्ज हरारत ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तक और कम अज कम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने की पेशगोई की है।
محکمے نے جموں کشمیر کے

0: बेशतर हिस्सों में अगले चंद दिनों में गरज चमक के साथ औसत दर्जे की बारिश की पेशगोई के साथ इक्का दुक्का मकामात पर अचानक सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने का अंदेशा जाहिर किया है। महकमे ने लोगों को नालों, झरनों और चट्टाने खिसकने के खतरे वाले इलाकों से दूर रहने का मशवरा दिया है। उधर केरलम में आज इक्का दुक्का मकामात पर शदीद बारिश जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत के 14 जिलों में से 11 में शदीद बारिश के इम्कान के पेश नज़र येलो अलर्ट जारी किया गया है। फीफा आलमी कप में अमरीका के मियामी गार्डन्स में खेले गए नॉकआउट के एक सनसनीखेज मैच में इजाफी वक्त दिए जाने के बाद अर्जेंटीना ने कैबो वर्डे को 3-2 से हरा दिया। इस जीत के साथ अर्जेंटीना की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई है, जबकि अमरीका के शहर एलिंगटन में खेले गए एक दूसरे नॉकआउट मैच में मिस्र ने पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरी T20 बैन अलाक्वामी मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच जो चेस्टर स्ट्रीट में खेला जाना था बारिश के सबब रोक देना पड़ा था। तीसरा मैच 7 जुलाई नॉटिंघम में खेला जाएगा। ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन आखिरी 2 मैचों की मेजबानी करेंगे। ये सीरीज 11 जुलाई को खत्म होगी। इसके बाद भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोजा बैन अलाक्वामी मैच की सीरीज खेली जाएगी। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के अखबारों ने अलग अलग खबरों को अहमियत दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में होने वाली मीटिंग में हुकूमत ने 52,000 करोड़ रुपए के दिफाई सौदों को मंजूरी दी, जिसे मुसल्ला अफवाज की सलाहियत बढ़ाने और उन्हें जदीद तरीन हथियारों से लैस करने की सम्त में बड़ा कदम माना गया है। इस खबर को रोजनामा इनकलाब ने खसूसी तौर पर शाया किया है। रोजाना प्रताप ने वजारत खारजा की जानिब से जारी एक बयान को जली सुर्खी के साथ शाया किया है, जिसमें वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान को दो टोक अल्फाज में बता दिया है कि पहले दहशतगर्दी का खात्मा होगा, फिर सिंध तास आबी मुहदे पर बात होगी। आयतुल्ला अली खामनेई की आखिरी रसूम के आगाज की खबर पर आज के बेशतर अखबारों ने तवज्जो मरकूज की है, जिसमें शिरकत के लिए भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों के वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। आखिरी रसूम 4 जुलाई से 9 जुलाई तक ईरान और इराक के मुख्तलिफ शहरों में अदा की जाएंगी।
0: और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वो बालोतरा में मुल्क के पहले ग्रीन फील्ड मरबूत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। दहशतगर्दी की रोकथाम के गुजरात स्क्वाड ने पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। मरकज ने एलनिनो के सबब मुल्क के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश और खुश्क साली की इम्कानी सूरत हाल का जायजा लिया। भारत के महकमा मौसमियात ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा आलमी कप में अर्जेंटीना मियामी में कैबो वर्डे को एक सनसनीखेज मैच में 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में दाखिल हो गया है। मिस्र भी प्री क्वार्टर फाइनल्स में दाखिल हो गया है। और आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे T20 में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: जी श्रोताओं, श्रीराम अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल पर, और DTH के साथ साथ हम उपस्थित हैं हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। हमारे बानीहाल के संवाददाता मोहम्मद तस्कीन ने हम तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है कि आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कुल मिलाकर जो बालताल के रास्ते से श्रद्धालु वादी की तरफ रवाना किए गए हैं उनकी कुल तादाद 2041 है, जिनमें से 1,404 पुरुष, 424 महिलाएं, 5 बच्चे, 139 साधु और

0: पत्थर सादवीज शामिल हैं। इसी के साथ जो पहलगाम मार्ग से दर्शन के लिए जो यात्रीगण जा रहे हैं उनकी कुल संख्या 2771 है, जिनमें 2030 पुरुष, 542 महिलाएं, 6 बच्चे, 105 साधु और 88 साध्वीज शामिल हैं। ये आंकड़ा हमें बताता है कि कुल मिलाकर 4812 जो श्रद्धालु हैं आज घाटी की तरफ रवाना किए गए हैं, जो दोनों बालतल और पहलगाम मार्ग से जाकर पवित्र शिवलिंगम के दर्शन करेंगे। यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारा एक हेल्पलाइन नंबर आपकी सेवा के लिए हमने रखा है, जिस पर आप SMS या WhatsApp के ज़रिए हम तक अपनी कोई बात, अपना कोई सुझाव, अपनी कोई शिकायत हम तक पहुँचा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर नोट करें, 9596990954। इसके अलावा हमारा ईमेल आईडी akashvanibaltal@gmail.com भी आपकी सेवा में हमेशा है। इस पर ईमेल करके हम तक अपनी बात पहुंचाइए। और जो प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जो श्रीनगर के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है, जिस पर आप राबिता कायम करके प्रशासन से किसी भी तरह का कोई सवाल पूछ सकते हैं, वो आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको जम्मू का टोल फ्री नंबर बताएंगे। फिलहाल श्रीनगर के लिए टोल फ्री नंबर रहेगा 1800-1807199। जी हाँ, 1800-1807199। इसी तरह से जम्मू के लिए टोल फ्री नंबर रहेगा 1800-1807198। जी हाँ, 1800-1807198। हम लगातार कोशिश में रहते हैं कि हमारे जो संवाददाता वादी के मुख्तलिफ कोनों से जो जुड़े हुए हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करें, उनसे ताज़ा तरीन जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करें और आपके साथ साझा करें। और इसी सिलसिले के तहत जो हमारे गांदरबल के संवाददाता रहीम रिजवान हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उनके पास हमारे लिए क्या हैं अभी तक की ताज़ा तरीन मालूमात, ताज़ा तरीन जानकारियाँ। रहीम रिजवान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी रिजवान, आपका खैर मकदम है आज के इस ट्रांसमिशन में, और हमें बताइए कि कल से जो यात्रा का सिलसिला, बल्कि आज दूसरा दिन है, जो सिलसिला जारी है, किस तरह के प्रबंधन किए गए हैं और किस तरह का माहौल है कुल मिलाकर?
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले हम अभिनंदन करते हैं उन तमाम बाबा बर्फानी के भक्तों का जो देश के विभिन्न भागों से तीर्थ यात्रा के लिए घाटी आगमन हुए तथा बालतल मार्ग से पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो रहे हैं।
0: जी
1: श्रोता, वो आज बालतल के पूरे क्षेत्र में मौसम अबर आलूदी है, ठंडी ठंडी हवाएं एवं ताजा हवाएं चल रही हैं। इन हवाओं का आनंद लेते हुए आज 7545 श्रद्धालु बालतल बेस कैंप से दर्शन के लिए पवित्र गुफा की तरफ निकल पड़े। दुमेल कंट्रोल गेट पर RFID कार्ड हासिल करने वाले इन श्रद्धालु में 5975 पुरुष, 1300 महिलाएं, 48 बालक बालिका, 28 साधु, 28 साधियां एवं 106 सुरक्षा कर्मी थे। बम बम बोले हर हर महादेव का पवित्र नाद करते हुए ये भक्त काफी उत्साह में थे तथा पैदल डांडी एवं गोडू पर सवार होके यात्री गुफा की ओर रवाना हुए। श्रोताओं, हम आप तक ये सूचना जरूर पहुंचाना चाहते हैं कि इस साल बालतल मार्ग से हवाई चापर की खदमात यात्रियों के लिए उपलब्ध नहीं रखी गई है, लिहाजा बालतल मार्ग से तमाम श्रद्धालुओं को पैदल डांडी, पिथु एवं गोडू पर सवार होके ही दर्शन के लिए जाना पड़ेगा। इस बीच बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए बालतल मार्ग से जिला प्रशासन गांदरबल ने हर पड़ाव पर उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी है, जिसको देखकर यात्री संतुष्ट हैं। श्रोताओं, सरकारी एदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता रोज 2927 श्रद्धालु शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित बालतल बेस कैंप वापस पहुंचे, जिनमें 2240 पुरुष, 615 महिलाएं, 13 बालक बालिका, 35 साधु, 8 साधियां एवं 16 सुरक्षा कर्मी भी थे। दर्शन करके वापस बालतल बेस कैंप पहुंचने वाले श्रद्धालु ने पवित्र गुफा पहुंचकर पूजा अर्चना की एवं देश तथा घाटी की अमन शांति एवं विकास के लिए प्रार्थना की। श्रद्धालु ने सुरक्षा एवं प्रशासन के द्वारा किए गए व्यवस्थाओं पर इत्मीनान का इजहार किया, क्योंकि श्रद्धालुओं के लिए भोजन, शौचालय, चिकित्सा व्यवस्थाओं के साथ साथ

0: रात्रि विश्राम के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी गई हैं। वहीं सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसबी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मकामी रजाकार तथा अन्य विभागों के एहलीकार चाकू चौबंद रखे गए हैं। चौथा, वो यात्रा के दौरान प्रशासन ने श्रीनगर कारगिल राजमार्ग पर शादीपुरा एवं मनिगांव में दो ट्रांजिट कैंप की सहायता के लिए कायम किए हैं। जम्मू भगवती नगर बेस कैंप या बालतल बेस कैंप से वापस रवाना होने वाले श्रद्धालुओं को शाम 5 बजे के बाद आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है, जिसके कारण श्रद्धालुओं को इन्हीं ट्रांजिट कैंपों में रात भर रुकना पड़ता है। प्रशासन ने रात्रि विश्राम के लिए दोनों ट्रांजिट कैंपों में तमाम सुविधाएं उपलब्ध रखी है। इस बीच गुजश्ता रात 11 बजे तक 896 श्रद्धालु ट्रांजिट कैंप मनिगांव पहुंचे, जिनमें 680 पुरुष, 181 महिलाएं, 32 बालक, बालिका एवं 3 साधु शामिल थे। रात्रि विश्राम के बाद इन यात्रियों को आज सुबह सवेरे बालतल की तरफ जाने की अनुमति दी गई। इस तरह श्रोताओं, आज दूसरे रोज भी सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा धार्मिक रूप से जारी है। हम भी प्रार्थना करते हैं कि आपकी ये तीर्थ यात्रा सफल हो जाए। जी इकबाल
1: जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सुनकर बहुत खुशी हुई कि आज मौसम में किसी हद तक हमें जो ठंडी का एहसास है वो मिल रहा है, और जो यात्रियों के लिए सुविधाएं रखी गई हैं और जो यात्री दर्शन करने के बाद वापस आए हैं वो भी खुश हैं इंतज़ाम से, और उन उसके बाद जो उनके ठहरने के लिए या उनकी वापसी के लिए इंतज़ाम किए गए हैं वो उनसे भी खुश हैं, और हम इस बात से भी खुश हैं कि आप हमसे बार बार जुड़ते हैं, हम तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं, जिसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
0: शुक्रिया आपका।
1: ये थे हमारे गांदरबल के संवाददाता रहीम रिजवान, जो हम तक पहुंचा रहे थे इन्फॉर्मेशन जो गांदरबल के मार्ग से, यानी कि पहलगाम के मार्ग से, माफ़ कीजिएगा, बालतल के मार्ग से जो यात्री जाते हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या कुछ इंतज़ाम किए गए हैं। और इस बीच अगर हम इस यात्रा, पवित्र यात्रा की बात करें, तो ये यात्रा हर एक इंसान को अपना जो ज़ाती, जिसको हम मुहासबा कहते हैं, अपने अंदरून में झांक के अपने अंदर जो मल है, जो पाप हैं, उनको देखने की एक प्रेरणा देती है, और उन्हें उन पापों को धोने और उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए उकसाते हैं। और इस तरह से जो मुख्तलिफ़ ज़बानों, सकाफ़तों और इलाकों से लोग आते हैं वादी में या इस दर्शन करने के लिए, उन अकीदतमंदों के साथ वो सफ़र करते हैं, मुख्तलिफ़ जो कल्चर्स हैं, जो मुख्तलिफ़ विचारधाराएं रखने वाले लोग हैं, वो आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख साझा करते हैं और एक दूसरे के सुख दुख सुनते हैं। बड़ा ही एक अच्छा माहौल होता है, बड़ा ही एक खूबसूरत ये भाईचारे की मिसाल है, जिस तरह से हमारी वादी या हमारा ये पूरा खूबसूरत देश विभिन्न कल्चर्स, बहुत सारी सकाफ़तों और बहुत सारे कल्चर्स का एक संगम है, इससे हमें ये भी प्रेरणा मिलती है, ये भी सबक मिलता है कि हमें हर वक्त बिना किसी मजहब, बिना किसी मिल्लत, ज़बान के भेदभाव या किसी और विचारधारा के अनुसार एक दूसरे को जज करने की आवश्यकता नहीं है। और जो यात्रा के दौरान जो यहाँ के लोकल्स, यहाँ के सुरक्षाकर्मी, चाहे लोकल सुरक्षाकर्मी हों या हमारे बाहर के वीर जवान हों, उनकी जो खिदमत है, उनमें जो जज्बा है वो नज़र आता है। जहाँ तक रज़ाकार हैं या जिन एनजीओज हैं उनकी बात करें, तो वो भी तनदेही से, बहुत ही लगन से, मेहनत से काम करते हैं, इन यात्रियों की खिदमत के लिए हमेशा रहते हैं, ताकि हमारे इन मेहमानों, हमारे इन यात्रियों, इन का पूरी तरह से ख्याल रखा जाए, इनको किसी तरह की असुविधा का सामना ना हो। फिलहाल हमारा ये विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz और FM पहलगाम के साथ साथ न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल और DTH के साथ साथ हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सुनते रहिए, और हम तक अपना फीडबैक पहुंचाते रहिए। हम मज़ीद अपडेट्स के साथ अपने अनंतनाग के संवाददाता एस तारिक से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक के लिए आप भक्ति संगीत सुनिए।

0: भक्ति से सराबोर मेधा सुक्तम, आप सुन रहे थे और यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल और DTH के साथ साथ हमारा ये विशेष प्रसारण हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी उपलब्ध है। जहाँ पर हम यात्रा की बात करते हैं तो जो वादी के या इस इलाके के जहाँ पे बाबा बर्फानी की गुफा है, वहाँ बर्फपोश पहाड़ों और जो कुदरती माहौल हमें मिलता है उसके तहफ्फुज़, उसके बचाव के लिए भी हमें काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस माहौल को, इस एरिया को साफ़ रखने की कोशिश करेंगे, आपके बाद जो आने वाले यात्री हैं, मेहमान हैं, वो भी इस खूबसूरती का आनंद ले पाएंगे। हालांकि इस रास्ते में कई जगहों पर आपके लिए डस्टबिन्स नस्ब किए गए हैं, रखे गए हैं, जिसमें आप अपने हिसाब से जो गीला कचरा होता है वो अलग डस्टबिन्स में डालते हैं और जो सूखा कचरा होता है वो अलग डस्टबिन्स में डालते हैं, ताकि जो इन डस्टबिन्स की सफाई करने के लिए फिर कर्मचारी आते हैं उनको किसी तरह का कोई फिर मुश्किल ना पेश आए। और इस यात्रा का जब हम जिक्र करते हैं, इसका असल पैगाम यह है कि जब इंसान सच्चे दिल, इखलास और अकीदत के साथ सफ़र करता है तो सफ़र मंजिल ही नहीं बल्कि ख़ुद ये सफ़र भी इसकी शख्सियत और रूह की तामीर करता है। हाँ, ये बात सच है कि हर एक चीज़, हर एक सफ़र, हर एक इम्तिहान हमें ज़िंदगी में एक नया सबक देती है। ख़ासकर जो हमारे धार्मिक सफ़र होते हैं उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी की असली जो रास्ता होता है, असली रेखा होती है, जिसके अनुसार हमें फिर अपना पूरा जीवन व्यापन करना होता है और हमारा जीवन सफल होता है। फिलहाल हमारे अनंतनाग के संवाददाता एस तारिक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, आपसे इनकी बात करवाएंगे, हम भी इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो कल का हाल रहा पहले दिन का और आज सुबह जो हाल है अभी अनंतनाग में, या जो पहलगाम मार्ग से जो यात्री जाते हैं, इस बारे में क्या हैं ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके पास। तारिक, आपका बहुत बहुत खैर मकदम।
1: बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपका और प्रिय श्रोताओं का मेरा सुप्रभात।
0: जी सुप्रभात।
1: 57 दिनों तक जारी रहने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा आज दूसरा दिन और जुलाई की चौथी तारीख है। भगवान शिवा के भक्तों का की यात्रा आस्था और सफलता के साथ जारी है। मध्यम हवाओं, सुहाने मौसम के बीच आज सुबह 4:30 बजे नुनवनाधार शिवत से 3,000 से जायद यात्री गुफा के ओर अपना रफ्ते सफर बांध चुके हैं। आज पहलगाम के नुनवन बेस कैंप और निजी होटलों और हटू से सुबह 4 बजे निकलकर वाहनों के जरिए तीर्थ यात्री 16 किलोमीटर दूर चंद्रवारी पहुंच चुके हैं, जहां से पंचकर्म के बाद अगले पड़ाव कृष्णाग और पंचतरणी की तरफ बाजाबता अपनी पदयात्रा शुरू करेंगे। तो हिमालय पहाड़ी ट्रैक से गुजरकर तीर्थ यात्री दोपहर से पहले पहल कृष्णाग और पंचतरणी पहुंच पाएंगे। इस प्रकार कृष्णाग और पंचतरणी में रात को ठहरे हजारों श्रद्धालुओं का जत्था अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं। आज ही गुफा में मौजूद शिवलिंगम का दर्शन प्राप्त करेंगे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कल 3 जुलाई शाम तक 12,168 यात्री बाबा बर्फानी के द्वार दर्शन कर चुके हैं। इस बीच जम्मू के भगवती नगर आधार शिवत से 3,434 यात्रियों का जत्था ट्रांजिट कैंप राजीगुंड तकरीबन 12 बजे पहुंचने वाला है, जहाँ से बालतल और पहलगाम के लिए अलग अलग काफे रवाना होंगे। इसमें से पहलगाम जो ट्रांजिट रूट है उसके लिए 133 छोटी बड़ी वाहनों में 2,731 यात्रियों पे मुश्तमिल तीसरा जत्था कड़ी सुरक्षा में बाबा बर्फानी के प्राचीन मार्ग पहलगाम के ओर रवाना होगा, जिनमें 2,030 पुरुष, 542 महिला, 105 साधु, 88 साध्वी और 6 बालक बालिका शामिल है, जो 1 बजे तक पहलगाम पहुंच पाएंगे। इस बीच कल डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने पहलगाम का दौरा किया और इंतजाम के साथ साथ यात्रियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जायजा लिया। तो इससे ये पता चलता है कि जो अधिकारी है या यात्रा इंतजाम जो करने वाले अधिकारी है, अफसर है, वो पल पल की

0: स्थानीय और बलपम इस पूरी यात्रा को बारीकबीनी से देख रहे हैं
1: जी।
0: प्रशासन के द्वारा जो नॉर्मल बेसिक शिक्षक और भ्रष्टाचारी में यात्रियों यात्रा पे आए हुए भक्तों के आराम के लिए और खाने पीने के अलावा अलग की सभी सुविधा बराबर उपलब्ध रखी गई है। इस तरह मोहकमा सेहत की जानिब से 100-100 बिस्तरों वाले दो बेस हॉस्पिटल या 49 मेडिकल एड सेंटर मुतलिक एमरजेंसी पोस्ट कायम किए हैं। तकरीबन 1,500 के करीब मेडिकल प्रोफेशनल्स को तैनात रखा गया है
1: जी।
0: हर जगह शौचालय रखे गए हैं। स्वच्छता को लेकर इस वर्ष भी यात्रा को स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ जोड़ दिया गया है, जिसके चलते सफाई अधिकारी रात दिन कोई यात्रा मार्ग में सफाई सुथराई में लगे हुए हैं। इसके अलावा भी कल मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने जो बयान दिया था यात्रा के हवाले से, वो बहुत ही बेहतरीन मैसेज थी, जिसमें स्वच्छ भारत या इसके ग्रीनरी की बात की गई है, माहौलियात को साफ रखने के लिए दरख्तों को जो दरख्तों को लगाने की बात की थी, वो सब चीजें यहाँ की सारी लोगों के लिए भी और यात्रा के लिए भी जरूरी है। तो उन्होंने आधार शिवत में 10 लंगर और 650 के करीब शिविर नस्ब किए गए हैं, जहाँ हाइजेनिक खाने पीने की व्यवस्था रखी गई है। बिगड़ते मौसम में किसी भी यात्री को किसी परेशानी से जूझना ना पड़े, तमाम खेमे वाटरप्रूफ और विंड प्रूफ रखे गए हैं। तो मौसम विभाग की सूचना के मुताबिक यात्रा ट्रैक में मौसम खुशगवार है। इस वक्त सहरगाम का गुफा का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है और दिन का तापमान ज्यादा से ज्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। चौथा पवित्र गुफा जाने की तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था रखी गई है। सुरक्षा बल के जवान मुस्तैदी से रात दिन अपनी ड्यूटी कर रहे हैं के साथ दवा दवा हो जी।
1: जी, इसका मतलब कि जो यात्रा 3 दिनों से अभी जारी है, जो यात्रियों का फीडबैक आप तक पहुंच रहा है उसके अनुसार यात्रा फिलहाल बहुत ही पुरस्लूब अंदाज से, बहुत ही खुशगवार अंदाज से जारी है, और हम आगे भी यही उम्मीद रखेंगे, यही कामना रखेंगे कि आगे भी यात्रा और हमारे मेहमान जो है उनको किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी, कोई मुश्किल ना हो। आपका इस सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे आगे भी बात होती रहेगी, फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद।
0: बहुत शुक्रिया और आपका धन्यवाद, सबका जो यात्रा है होता रहे।
1: शुक्रिया। ये थे हमारे अनंतनाग के संवाददाता एस तारिक, जो कल और आज का जो लेखा जोखा है हम तक पहुंचा रहे थे, जिसके अनुसार 12,000 से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं उन्होंने कल से पवित्र शिवलिंगम के दर्शन किए हैं और वो अपनी वापसी के रास्ते पर रवा दवा हैं, और उनके लिए जो इंतज़ाम हैं प्रशासन के द्वारा जो इंतज़ाम किए गए हैं, जिसमें हम अभी इनसे बात करने से पहले सफाई की बात कर रहे थे, उस पर भी इन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय, उनका जो पैगाम कल आया था वो भी इसी हवाले से आया था कि स्वच्छ भारत अभियान का जो असली मकसद है वो इन्हीं चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान देता है, कि चाहे वो हमारे मज़हबी मकामात हों, चाहे वो हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हों, चाहे वो हमारी आम जिंदगी हो, चाहे वो हमारी घर हो, उनमें हमें सफाई का इंतज़ाम करना चाहिए, सफाई का अहतमाम करना चाहिए, क्योंकि सफाई से ही इंसान पहचाना जाता है कि ये इसके हृदय में, इसके जहन में जो पैगाम है वो आ चुका है, और सफाई से ही लगता है कि इंसान असल में एक इंसानी सूरत में इस धरती पर काम कर रहा है। और हमारी भी यही आपसे हमारा निवेदन है, आपसे ये गुजारिश है, जो पूरा रास्ता है, चाहे वो हम बालतल के रास्ते की बात करें या पहलगाम के रास्ते की बात करें, दोनों तरफ से सफाई का ख़ास इंतज़ाम रखे। जो प्रशासन इंतज़ाम कर रही है उसका भी हमें मान रखना चाहिए, जो हम तक इतनी सुविधाएं, जो इतनी मेहनत करती हैं उसका भी हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। फ़िलहाल के लिए हमारा ये विशेष प्रसारण जारी है, आप हमारे साथ बनी रहिए, भक्ति संगीत सुनिए, हम ताज़ा तरीन जानकारी लिए आपकी सेवा में उपस्थित हैं।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM बालतल, FM पहलगाम, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल, DTH और हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। टोल फ्री नंबर जिस पर आप किसी भी सहायता के लिए कॉल कर सकते हैं, श्रीनगर के लिए टोल फ्री नंबर है 1800 180 7199, और इसी तरह से जम्मू के लिए जो हमारा टोल फ्री नंबर है जो प्रशासन के द्वारा जारी किया गया है वो है 1800 180 7198। हमारा ईमेल आईडी जिस पर आप अपनी कोई भी शिकायत, कोई भी बात, कोई भी सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं वो है akashwanibaltal@gmail.com। इसी तरह से हमारा एक टेलीफोन नंबर भी है जिस पर आप SMS या WhatsApp के ज़रिए हम तक जुड़ सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, वो है 9596990954। जी हाँ, 9596990954। इस जो प्रसारण अभी हो रहा है इसको विभिन्न भागों के विभिन्न ज़बानों के लोग सुनते हैं, और हमारी यही कोशिश रहती है कि अपनी बात जो है वो आपके समक्ष इस तरह से रखें, इस प्रकार से रखें कि सबकी समझ में आए, और हमारी यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी सहायता है, आपकी सुरक्षा है, आपके लिए जो हम इंतज़ाम करने की कोशिश करते हैं उनमें किसी तरह की कमी ना हो। और इसी तरह से अगर हम बात करें जो रजिस्ट्रेशन का जो सिलसिला होता है, यात्रियों को सिर्फ यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करनी होती है, रजिस्ट्रेशन के बाद इनको तैयारी भी करनी होती है। तैयारी इसलिए कि आपको पता है कि जो हमारी घाटी है, घाटी जम्मू कश्मीर की घाटी, ये हर तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है, और जो हिमालयी पहाड़ियां हैं जिनमें बाबा बर्फानी की गुफा भी है, और इन इलाकों में जो मौसम है वो एक जैसा नहीं रहता, कभी धूप, कभी बारिश, कभी

इंतज़ाम किए आए होते हैं, जिसमें कि जो उनके पास गर्म कपड़े भी नहीं होते, बरसाती नहीं होती उनके पास, या उनके पास मज़बूत जूते नहीं होते, उन्होंने दस्ताने टोपी वगैरह साथ नहीं रखे होते हैं, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है वो ये सब चीज़ें डिमांड करता है आपको। हालांकि जो वज़न है अपने बैग का, जो आपने बैग उठाया हुआ होता है उसको भी नज़र में रखना होता है, उसमें ज़्यादा वज़न नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपको फिर आगे कठिनाई होती है चलने में। आप एक हल्का फुल्का जो गर्म कपड़ा है, जैसे स्वेटर हो या कोई स्वेटशर्ट हो, वो अपने बैग में रखें। एक जो है बरसाती, या जिसको हम रेनकोट कहते हैं, वो एक हल्का सा रेनकोट अपने साथ रखे। ख़ासकर जो चलने के लिए हमें जूते चाहिए होते हैं वो मज़बूत होने चाहिए, क्योंकि रास्ता पथरीला है और स्लिपरी भी है। इसमें जो चप्पल का है वो आप प्रयोग ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको हल्के फुल्के दस्ताने और टोपी अपने साथ रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का मौसम ये सब चीज़ें डिमांड करता है। और इसमें साथ ही साथ आपको पानी की एक बोतल अपने साथ रखनी ही रखनी होती है, क्योंकि इस इलाके में आपको डिहाइड्रेशन के शिकार अगर आप हो गए तो फिर आपकी जो है हालत ख़राब हो सकती है। और इसके साथ साथ चलते चलते भी आपको सिप पानी की एक एक सिप लेनी चाहिए, पानी का एक एक घूंट लेना चाहिए, ताकि बॉडी में जो है वो पानी की कमी ना हो और आपको किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। इसमें जो रास्ते में हमारे वॉलंटियर्स होते हैं, एनजीओज होते हैं, उन्होंने भी आपके लिए पानी का इंतज़ाम किया हुआ होता है, उसकी आप चिंता ना करें। जो जाने वाले यात्री हैं आप उन पानी की बोतल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर अच्छा ये रहता है कि आपके साथ अपनी एक पानी की बोतल हो, जिसका इस्तेमाल आप कहीं भी जाके कर सकते हैं, खड़े होके, बैठ के, या कहीं आप विश्राम करना चाहें मिनट दो मिनट के लिए, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो है ना, इस इलाके में जो इलाका बहुत ऊंचाई पर है, 14,000 फुट से ज़्यादा की ऊंचाई पर है, जो सतह समंदर की हम बात करते हैं, 14,000 से ज़्यादा फुट की ऊंचाई पर है, तो यहाँ पे जो सांस लेने में वो है जो है वो प्रॉब्लम होती है, और जिसकी वजह से फिर आपको चक्कर या शदीद थकन महसूस होती है। और अगर आपको इस तरह का कोई आपके साथ इस तरह का कोई मामला पेश आए, तो जो है डिस्पेंसरीज़ हैं वहाँ पे, या जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अहलकार हैं वहाँ पे चप्पे चप्पे पे, तो आपको उनके साथ राबिते में आना चाहिए और अपना जो है चेकअप करा लेना चाहिए। फ़िलहाल के लिए सुबह के 9:25 हो रहे हैं। अब हमारा जो लोकल यहाँ पे उर्दू खबरों का बुलेटिन आता है, पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे बात जारी रखेंगे।

0: बहुत अच्छा सरकार से ये आशा करता हूँ कि अगले साल इससे भी कुछ बेहतर करे।
1: मेरा नाम सुनीता रानी है, मैं पंजाब से सरहंद से आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है भोले बाबा ने हमें बुलाया दूसरी बार भी, ऐसे ही हर साल बुलाए। प्रशासन बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छी व्यवस्था है।
2: मेरा नाम टीना गाबा फ्रॉम सरहंद पंजाब, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहती हूँ भोले बाबा सबको ही बुलाए,
1: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
3: दरियासना जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से आज मजीद 4,812 यात्री वादी की तरफ रवाना किए गए हैं। इनमें 2,041 मर्द और 2,771 खवातीन श्रद्धालु शामिल हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने यात्रा के पहलगाम रूट का दौरा करके वहां यात्रियों के लिए दस्तियाब मुख्तलिफ तरह की सहूलियात का बरसरी मौका जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मुहिद्दीन भट्ट और दीगर मुतल्लिका अफसरों के हमराह डिवीजनल कमिश्नर ने खास तौर पर फ्रिस्किंग पॉइंट, EKYC वेरिफिकेशन और RFID रजिस्ट्रेशन काउंटरों का मुआयना किया। इसी दौरान महकमा दीह तरक्की और पंचायती राज के सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज असद ने बालतल बुनियादी कैंप का दौरा करके वहां मौजूद यात्रियों से सफाई सुथराई के इंतजाम के बारे में उनसे जानकारी हासिल की। सेक्रेटरी मौसूफ ने ठोस फजले के बंदोबस्त से मुतल्लिक प्लांट, सफाई सुथराई के असासों और टेंट सिटी नीज लंगरों का मुआयना करके यात्रा 2026 के लिए हरी पहलकारी का जायजा लिया। सेहत और तबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने हल्का इंतखाब टंगमर का दौरा करके वहां बुनियादी ढांचे के कई प्रोजेक्ट आवाम के नाम वक्फ किए। वजीर मौसूफा ने सब जिला अस्पताल टंगमर्ग में एक जच्चा और बच्चा ब्लॉक का इफ्तिताह करने के अलावा टारहमक के हायर सेकेंडरी स्कूल में ऑडिटोरियम और लालपुरा में नए तर्ज के प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपने ख्याल का इजहार करते हुए सकीना इत्तू ने कहा कि मौजूदा सरकार जम्मू कश्मीर भर में तालीम और तबी शोबों में बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए लगातार सरमायाकारी कर रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और खेल कूद के वजीर सतीश शर्मा ने कहा है कि सरकार कारखानादारी को फरोग देते हुए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करने के लिए पुरअज़म है। श्रीनगर में अवामी मसाइल की समात के दौरान उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए सरमायाकारों और सन्नत से जुड़े मुतल्लिकीन के लिए एक आसान और मुवाफिक माहौल पैदा किया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने पामपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेयर प्राइस शॉप एसोसिएशन, केरोसिन डीलर्स और दीगर कई वफूद से मुलाकात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोक भवन श्रीनगर में कई अहम शख्सियात ने मुलाकात की, जिनमें प्रदेश BJP के एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद यूसुफ भट्ट भी शामिल हैं। माहौलियात से मुतल्लिक कानून साज असेंबली की कमेटी ने श्रीनगर के ईदगाह इलाके में अच्छन वेस्ट मैनेजमेंट जगह का मुआयना करके वहां शहर की बुनियादी वेस्ट प्रोसेसिंग सहूलियात के कामकाज का बरसरी मौका जायजा लिया। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जेर क्यादत कमेटी के अरकान ने साथ ही आंचार होकर सर और खुशहाल सर झीलों, नीज दीगर आबी पनागाहों का भी दौरा किया और वहाँ नाजायज तजावजात के खिलाफ अहकाम जारी किए। NIT श्रीनगर में आज से 8 जुलाई तक कुल हिंद क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है, जिसमें मुल्क भर के NIT से ताल्लुक रखने वाली 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का रस्मी इफ्तिताह करते हुए इदारे के डायरेक्टर प्रोफेसर विनोद कुमार कनौजिया ने इदारों के दरमियान करीबी ताल्लुक बढ़ाने में खेल कूद की अहमियत बयान की। ये मैच श्रीनगर के 8 मकामत पर खेले जाएंगे। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 20 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 25.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
4: जी श्रोताओं, हमने आपको यहाँ का लोकल जो उर्दू खबरनामा आता है वो सुनाया। खबरें सुनने का यही हमारा उद्देश्य होता है, यही मकसद होता है कि आप तक जानकारी पहुँचे। और जैसे कि हमने खबरों में अभी सुना कि जो यात्री यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ के इंतज़ामात से फ़िलहाल बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनको किसी तरह की कोई मुश्किल या किसी असुविधा का उनको सामना नहीं करना पड़ रहा है, बहुत ही खुश हैं। और जो नए आने वाले यात्री हैं उनका भी हम हृदय से, तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनके स्वागत के लिए हम यहाँ तैयार हैं, उनके स्वागत, उनकी खिदमत के लिए हम यहाँ पे तैयार हैं।
5: बाबा बर्फानी के दर्शन है परम आनंद। इस आनंद का लुत्फ उठाने जब आए हैं तो साथ में नॉन प्लास्टिक पानी की बोतल, खाने का सामान जैसे ड्राई फ्रूट्स, भुने हुए चने, गुड़ और चॉकलेट जैसा जरूरी सामान साथ रख लें ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। साथ ही अपने सामान में वैसलीन, कोल्ड क्रीम या सनस्क्रीन जरूर रखें ताकि आपकी स्किन ठीक रहे। ये भी ध्यान रखें कि सफर अकेले ना करें, ग्रुप में चलें ताकि आपके साथी हमेशा आपकी नजर में रहें। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन

0: www.mobilemagic.com पर जाएं या फिर 1464 पर कॉल करें।
1: जी श्रोताओं, ऐसी जानकारियाँ, छोटी मोटी जानकारियाँ आप तक पहुँचाना हमारा फ़र्ज है। जैसा कि इस जानकारी में भी हमने सुना कि आपको अपने साथ एक पानी की बोतल लेनी चाहिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स या कोई खाने का सामान ज़रूर अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि रास्ता लंबा है, रास्ता कठिन है और इस दौरान आपको भूख लग सकती है, प्यास लग सकती है, आपको खाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और इसी तरह से जो आप यात्रा करते हैं उसमें आपको अपनी जो जिस्मानी ताकत है, जो आपकी बॉडी एनर्जी है, उसको बरकरार रखने की भी ज़रूरत रहती है और आपको हद से ज़्यादा या ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ चलने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे करके भी अपने मकाम पर पहुँच सकते हैं, बाबा बर्फानी के दर्शनों में पहुँच सकते हैं बिना खुद को कष्ट दिए हुए, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो आप ऊपर जा पाएंगे। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप इतना लंबा और कठिन रास्ता तय कर पाएंगे। साथ ही माहौल को साफ़ रखने की हमने बात की, माहौल को साफ रखना दिमाग में रखिए, माहौल को साफ रखना फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए, क्योंकि सफाई से ही ये सारा कुछ जो है वो पवित्र रहेगा और आपका जो मन है, मन मुक्त हो जाएंगे आप, मन आपका जो है बहल जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें और तो रास्तों पे जो घोड़े चलते हैं, पालकियां चलते हैं और पैदल वाले, पैदल चलने वाले चलते हैं, उनके लिए रास्ते अलग अलग हैं। आप अगर खुदा न खास्ता किसी घोड़े के सामने आ गए या किसी पालकी वाले के सामने आ गए तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बेहतर है कि जो अलग अलग रास्ते हैं, मुकर्रर रास्ते आपके लिए, आप अपने अपने लेन्स में अपने अपने रास्तों पे चले ताकि आपसे किसी और को कष्ट ना हो और आप को किसी और से कष्ट ना हो। और किसी भी जो है इमरजेंसी में, हंगामी सूरत हाल में पुलिस, तिब्बी अमले या इमदादी अहलकारों से फौरन राबता कायम करें, क्योंकि ये जो अहलकार हैं, चाहे वो पुलिस के अहलकार हों, हेल्थ डिपार्टमेंट के अहलकार हों या जो एनजीओज रहते हैं, तिब्बी इमदादी अमला या मुख्तलिफ जो रज़ाकार होते हैं, वो आपकी सहायता के लिए इस रास्ते पर हमेशा आपको उपलब्ध मिलेंगे। और जो ये अहलकार होते हैं, इनके साथ आपको, ये तो आपके साथ इज़्ज़त से पेश आएंगे, ये आपकी मदद करेंगे और आपका भी यही फ़र्ज़ बनता है कि इन रज़ाकारों के साथ एहतराम और तआवुन का मुजाहरा करें, क्योंकि ये आप ही की सेवा के लिए वहाँ पर काम करते हैं। आपको किसी चीज़ का किसी चीज़ से कोई कष्ट ना हो, किसी मुश्किल में आप ना फंसें और आपको किसी तरह का कोई दुख ना देखना पड़े। फ़िलहाल के लिए हमारा ये विशेष प्रसारण जारी है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, भक्ति संगीत सुनिए। आगे आपके लिए और भी इन्फॉर्मेशन हम एकत्रित कर रहे हैं।

जी श्रोताओं, भक्ति से सर अबूर आपने ये रुद्र पाठ सुना। जिस तरह आपको पता है कि इस वक्त आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आकाशवाणी के FM बालतल 103.7 में घर्ट्स, FM पहलगाम 100.1 में घर्ट्स, न्यूज़ ऑन एआईआर की अमरनाथ सर्विस आराधना चैनल और DTH के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म्स पर ये प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। हम बात कर रहे थे श्री अमरनाथ जी यात्रा के मुतालिक, और इसके मुतालिक हम तक जो इन्फॉर्मेशन अभी पहुंच रही है वो ये है कि जो हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है या बरसग़ीर है, इसमें सबसे जो पुरानी या सबसे कदीम मजहबी यात्राएं हैं उन यात्राओं में श्री अमरनाथ जी यात्रा का शुमार होता है। हिंदू रिवायत के मुताबिक ये मुकद्दस गार हज़ारों बरसों से अकीदत का मरकज़ रही है। रिवायत ये है कि भगवान शिव ने इस गार में माँ पार्वती को अमर कथा यानी कि अमर होने का राज सुनाया था, जिसके बायस इस मकाम को गैर मामूली रूहानी अहमियत हासिल है। और हो क्यों ना, इसी वजह से तो पूरे देश से और देश के बाहर से तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं और इस यात्रा में अपना हिस्सा लेते हैं, इस यात्रा को बहुत ही खुशी से पूरा करते हैं। और तारीखी एतबार से अगर हम 12वीं सदी की मशहूर कश्मीरी तारीख किताब राजतरंगनी में भी इस अमरनाथ गार का ज़िक्र मिलता है, जिसे ये मालूम होता है कि ये मुकद्दस मकाम उस ज़माने में भी मारूफ था।

विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सद्मिद्वृधे।

वयं भगं मित्रं अदितिं दक्षमस्त्रिधं अर्यमणं वरुणं सोमं

पृषदश्वामरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः

0: श्रोताओं, फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डायरेक्टर मेट्रोलॉजी श्रीनगर जनाब डॉक्टर मुख्तार अहमद। इनसे हम मौसम के हवाले से कल भी हमने इनके साथ बात की थी और आज भी आपको इनकी ज़बानी मौसम का जो हाल है, आने वाले 24 घंटों में जो रहने वाला है, उसके बारे में चंद सवाल पूछेंगे। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है आज के इस स्पेशल ट्रांसमिशन में।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: सर, हमें बताइए कि जो आने वाला दिन है, जो आज का दिन है, इसमें जो मौसम है पहलगाम और बालतल मार्गों का, वो कैसा रहने वाला है और पूरी जो वादी है उसमें मौसम का हाल अगले 24 घंटों में कैसा रहने वाला है?
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मौसम जो है थोड़ा सा खुला है, आज खुली धूप है काफी सारी जगहों पे, और जो बालताल से लेके होली केव का एक्सिस से, इसी तरह पहलगाम से लेके होली केव का एक्सिस से, ये दोनों रूट्स पे मौसम अभी ठीक है और बारिश के चांसेस भी बहुत कम है आज। तो दिन भर मौसम जो है ठीक रहने के चांसेस हैं, थोड़ा सा हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रहेगा। और कल जो है, खासकर आज लेट नाइट और कल मॉर्निंग के आसपास थोड़ी सी बारिशों के चांसेस हैं जम्मू डिविजन के अंदर
0: जी।
1: और के साथ साथ कल मॉर्निंग और उसमें यहाँ भी थोड़े से ब्रीफ शावर्स की पॉसिबिलिटी है, और साथ साथ में कल डे टाइम में भी थोड़ा सा हल्की बारिशें हो सकती है, खासकर लेट आफ्टरनून इवनिंग है उसमें। तो आज का दिन जो है ठीक है, लेकिन कल जो है थोड़ी बारिशें हो सकती हैं, खासकर अर्ली मॉर्निंग मॉर्निंग है उसमें और शाम के टाइम।
0: डॉक्टर साहब, कल जम्मू में बारिशें हुई हैं शाम को, लेकिन जो यात्रा है उस पर किसी तरह का कोई असर नहीं हुआ है, तो जो आने वाला दिन है उसके हवाले से यात्रियों के लिए आपके पास क्या मशवरा है?
1: बिल्कुल, बारिशें होती हैं, अभी पिछले दिन भी हुई, तो ऐसा कोई हैवी स्पेल नहीं है, कोई कंटिन्यूस रेन नहीं है, तो बरसात का जो बारिशें हैं, शावर्स हैं, वो थोड़ी देर के लिए होती हैं, बीच में बारिश भी हो सकता है
0: जी,
1: लेकिन बिल्कुल ये ब्रीफ पीरियड के लिए होंगे और उसके बाद जो फिर से मौसम खुलने के इम्कान है।
0: ये मानसून के वजह से भी हो सकता है?
1: जी, मानसून का ही वजह से ये बारिशें हो रही
0: है
1: आज तक।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए, आपसे आगे भी बात होती रहेगी। ये थे हमारे साथ डायरेक्टर मेट्रोलॉजी श्रीनगर डॉक्टर मुख्तार अहमद, और इनसे हमने जाना कि क्या रहने वाला है अगले 24 घंटों में मौसम का हाल। जैसा कि आपने सुना और इन्होंने बताया कि अगले 24 घंटों में आने वाले मौसम अच्छा रहने वाला है, खुशगवार रहने वाला है। हालांकि आज जो है मॉनसून का सीज़न चल रहा है, तो इसमें ये छोटी मोटी बारिशें एक जगह दो जगह होना ये तो लाजमी है, क्योंकि मौसम ही ऐसा है। मॉनसून में ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, मगर हमें तैयार रहना है। जैसा कि हमने पहले भी बोला कि जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि इस मौसम में या इस दोनों मार्गों पे जो है आपको तैयार रहना होता है, आपके साथ अच्छे कपड़े होने चाहिए, एक अच्छा जूता होना चाहिए और आप फुली प्रिपेयर्ड होने चाहिए पूरे इस सफ़र को करने के लिए, क्योंकि सफ़र में फिर कठिनाइयां अगर आती हैं तो सफ़र किरकिरा हो जाता है। वैसे भी ये सफ़र बहुत पावन है, बहुत पुण्य का सफ़र है, तो इस सफ़र में कठिनाइयाँ और मुश्किलें नहीं आनी चाहिए।

आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना सर्विस और DTH के साथ साथ आप ये विशेष प्रसारण हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन रहे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा कब से शुरू हुई? हमारे जहनों में आमतौर पर कभी कभी ये सवाल आता है, और अगर हम भगवान शिव की बात करें पहले इस बात का जवाब कि यात्रा कब शुरू हुई, इसका जो है आगमन या इसकी शुरुआत हज़ारों वर्षों पहले हुई ये माना जाता है। ये पुराणों में, ये वेदों में लिखा हुआ है, और हिंदू रिवायत के मुताबिक ये मुकद्दस गार हज़ारों बरसों से अकीदत का मरकज़ रही है। रिवायत यह है कि भगवान शिव ने इस गार में माता पार्वती को अमर कथा यानी अमर होने का राज सुनाया था, जिसके बायस इस मकाम को गैर मामूली रिवायत या गैर मामूली अहमियत, रूहानी अहमियत आज तक हासिल है, और इसका एक जीता जागता उदाहरण अभी हमारे सामने है। हज़ारों की तादाद में देश विदेश से भक्त आते हैं, देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, मन में उम्मीदें लेकर, मन में आशाएं लेकर, मन में दुआएं लेकर, अपने कष्ट लेकर, अपने दुख लेकर, दर्द लेकर बाबा भोलेनाथ के दर्शनों में वहाँ पे जाके प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने जो उनके दिलों में, उनके हृदय में जो भी कुछ होता है उसको बाबा भोलेनाथ के साथ साझा करते हैं, ताकि बाबा भोलेनाथ उनके दुखों, दर्दों, कष्टों को दूर करें। और इससे हमें ये सबक मिलता है कि अपने पालने वाले, अपने पैदा करने वाले, अपने खालिक व मालिक के सामने जब हम अपना दुख दर्द लेकर जाते हैं, अपने कष्ट लेकर जाते हैं, तो वो यकीनी तौर पर हमारे

दुख दर्द दूर करता है, मगर दिलों में आस्था होनी चाहिए, दिलों में वो जज्बा होना चाहिए, दिलों में उम्मीद होनी चाहिए और ये विश्वास होना चाहिए कि हम जो ये सब कर रहे हैं इसका एक दिन हमें फल ज़रूर मिलेगा। किंतु कभी कभी हमें ये लगता है कि शायद हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होती, कबूल नहीं होती, मगर ऐसा नहीं है। इंसान को अपने पापों पुण्यों का बदला इसी लोक में मिलेगा। और जहाँ तक भगवान शिव की हम बात करें, तो भगवान शिव हिंदू धर्म के एक अहम तरीन देवताओं में से एक देवता है, और उन्हें महादेव, भोलेनाथ या शंकर के नामों से भी पुकारा जाता है। वो त्रिमूर्ति के एक रुकन है, जहां ब्रह्मा को विष्णु के पालने वाले और शिव को सुनहार और नई तख्लीक के लिए तब्दीली की कुव्वत का मुजाहिरा माना जाता है। शिव जी सादगी, तपस्या, रहमदिली और इंसाफ की अलामत समझा जाता है, और इसका जीता जागता उदाहरण हमें इस बात से मिलता है कि हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, शिव के दरबार में जाते हैं, अपनी प्रार्थनाएं लेकर, अपनी दुआएं लेकर, और अपने दुख दर्दों का उनसे वो इलाज चाहते हैं, मदावा चाहते हैं, और इसी उम्मीद में वो आते हैं। हमारी माताएं, बहनें, हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो भी आते हैं इसी उम्मीद, इसी आस्था, इसी आश आस में आते हैं कि बाबा भोलेनाथ हमारी जो दुआएं हैं वो कबूल करेंगे और हमें इन दुख दर्दों से छुटकारा देंगे।

जी श्रोताओ, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी श्रीनगर का एफ एम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफ एम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल डीटीएच के साथ साथ आप हमारा ये विशिष्ट प्रसारण ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर हम आप तक साझा कर रहे हैं जिसका उपयोग करके आप हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप या एसएमएस के जरिए। नंबर नोट कीजिए, नंबर है 9596990954 और ईमेल आईडी है akashvanibaltal@gmail.com। फिलहाल के लिए हमारे पास ताज़ा तरीन जो दर्शन रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक आज अभी तक कुल मिलाकर 2547 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए, जिनमें 2000 पुरुष, 480 महिलाएं, 23 बच्चे, 13 साधु और 31 जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार वो शामिल हैं। और ये आंकड़ा कुल मिलाकर 2547 अभी बता रहा है और इसमें आगे बढ़ोतरी होती रहेगी और जैसे ही बढ़ोतरी होती रहेगी हम आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए हम भगवान शिव के बारे में बात कर रहे थे, महादेव, भोलेनाथ या शंकर कहिए, उनके बारे में बात कर रहे थे और हम ये कह रहे थे कि उनकी सादगी, उनकी तपस्या, उनकी विवेकता, रहमदिली और इंसाफ हमारे सामने है, उसकी एक मिसाल दी जाती है। उनका मस्कन या उनका घर या यूं कहिए कि वो कैलाश पहाड़ के बादशाह है, कैलाश पहाड़ उनका घर है, उनकी शरीक हयात या उनकी जो साथी है माता पार्वती हैं, जबकि श्री गणेश और कार्तिकेय उनके दो बेटे। शिवजी की पहचान ये है कि शिवजी की जटाओं से दरियाए गंगा जमीन पर उतरी है और ये रिवायत हिंदू अकीदे में बहुत अहम है। उनके गले में सांप, माथे पर तीसरी आंख और सर पर चांद का हिलाल उनकी मुनफरिद पहचान है। उन्हें इन्हीं सब चीजों से माना जाता है, इसीलिए उन्हें महादेव, भोलेनाथ और शंकर कहा जाता है। उनका अहम जो चिन्ह है, जिसकी वजह से वो पहचाने जाते हैं, जिसकी वजह से वो लगता है कि भगवान भोलेनाथ हमारे साथ हैं, वो चिन्ह है शिवलिंग, जिस शिवलिंग की हम इस प्रसारण में लगातार बात करते रहते हैं, जिस शिवलिंग के दर्शन के लिए देश विदेश से हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जो तख्लीक, कायनात और तवानाई और आदमियत की अलामत समझा जाता है। समझा जाता है कि शिवलिंग से ही इस पूरे ब्रह्मांड को पैदा किया गया है। श्री अमरनाथ जी की मुकद्दस गार को इसलिए खसूसी अहमियत हासिल है कि रिवायत है कि भगवान शिव ने यहीं माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी और हमने ये बात आपसे पहले भी साझा की है। और जो हम आपसे कहना भूल गए थे वो ये कि एक मकबूल एक आम रिवायत है कश्मीर में, जिसके हवाले से एक चरवाहा था जिसका नाम बूटा मलिक था। उसने इन पहाड़ों में जाकर जब वो अपने चरवाहे चरा रहा था तो वहाँ पर इस गुफा को देखा, इस गार को देखा और वहाँ शिवलिंगम को देखा और क्या कुछ देखा, कोई अदृश्य नज़ारा देखा, क्या कुछ देखा उसकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, मगर बात ये करेंगे कि उनकी वजह से फिर ये जो गार है इसका जिक्र हुआ।

और अपने जो अपना जो हृदय है, अपनी जो नफ्स है, उस पे हमें कंट्रोल हमारा होना चाहिए। हमदर्दी, फितरत का एहतराम, यानी कि जो हम बार बार इस प्रोग्राम में बात करते हैं, इस कार्यक्रम में बात करते हैं, वो ये कि हमें इस कुदरत का एहतराम करना चाहिए। कुदरत में जो कुछ है, उसका जो बनाने वाला है, उसका एहतराम, और जो कुछ कुदरत में बना हुआ है, उसका एहतराम। क्योंकि अगर इस कुदरत से कोई एक चीज़ विलुप्त हो जाए, गायब हो जाए, तो पूरे जो जो पूरा जो हमारा जीवन व्यापन है, उस पे एक गंभीर असर पड़ेगा। आप कभी सोच कर देखिए कि ऊपर वाला ना करे कि कोई एक ऐसी चीज़ इस पूरी दुनिया से, इस धरती से विलुप्त हो जाए, जिसके बगैर हमारा जिंदा रहना मुश्किल हो जाए, तो कैसी होगी वो ज़िंदगी? आप इस बात पर ध्यान कीजिए और फिर सोचिए कि ऊपर वाले ने हम पर कितनी कृपा की है, हम पर कितनी मेहरबानी की है, कि ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल फ्री में दी हुई हैं, बिल्कुल मुफ्त में दी हुई हैं, और हमसे ये कहा है सिर्फ कि इनकी देखभाल करो। हमें इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है, हमें इसके लिए कोई अदायगी नहीं करनी है, हमें बस इनका इस्तेमाल करना है और इनकी देखभाल करनी है। और हमारा यही कर्तव्य है कि जो कुछ भी धरती पर है, इसका हमें ध्यान रखना है, इसकी हमें सुरक्षा करनी है, और ये हम पर पहला कर्तव्य है। बहैसियत इंसान ये हम पर एक लाजमी फ़र्ज़ बनता है कि पूरी धरती में जो कुछ है, हम उसकी हिफाजत करें, उसकी सुरक्षा करें। और इसके साथ साथ जो भगवान शिव का पैगाम है, वो बातिनी सुकून, यानी कि जो इनर पीस होती है हमारी, इनर पीस हमें कैसे हासिल होगी? वो ऐसे होगी कि जो हमारा पालने वाला है, हमें उसके करीब जाना है। चलते फिरते, हर एक सांस लेते या छोड़ते, हमें अपने पालनहार, अपने बनाने वाले को याद करना है, जिसकी वजह से हमें जो इनर पीस है वो हासिल होगी, और हमारा जो सही मकसद है, जिस मकसद के लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है, वो हासिल होगा। हमने आपको दर्शन रिपोर्ट सुनाया। आखिर पर जो हम तक दर्शन रिपोर्ट पहुंचा है, उसके मुताबिक 2547 श्रद्धालुओं ने अभी तक जो है शिवलिंगम के दर्शन किए हैं, जिनमें 2000 पुरुष, 480 महिलाएं, 23 बच्चे, 13 साधु और 31 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। जैसे ही हम तक मज़ीद अपडेट्स पहुंचती हैं, हम आप तक पहुंचाते जाएंगे। हमारा कर्तव्य यही है कि आप तक ताज़ा तरीन जानकारियाँ हम पहुंचाते रहें। फ़िलहाल हमारा कर्तव्य यहाँ पर ये कि आपको शिव संगीत और भक्ति संगीत सुनवाएं।

श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपने विभिन्न चैनलों से। जिस तरह से आपको हम बताते आ रहे हैं कि आप FM बालतल 103.7 MHz पर हमारे ये प्रसारण सुन रहे हैं, FM पहलगाम 100.1 MHz पर, इसके अलावा न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल के साथ साथ DTH और हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हमारा ये प्रसारण उपलब्ध है। जैसे कि हमने पहले भी कई बार बोला है कि इस यात्रा के दौरान अगर आपको किसी किस्म की चिकित्सक समस्या है, कोई आपको कोई सेहत से मुतालिक कोई दुश्वारी है, तो पहले उसको ठीक कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये यात्रा एक ऐसी यात्रा है कि जिसके दौरान अगर आपके साथ किसी चीज़ की कोई ऊंच नीच हुई, कोई अनहोनी हुई, तो फिर आपका ये सफ़र ख़राब हो जाएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आपका स्वास्थ्य है ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपकी यात्रा अच्छी होगी, आपकी यात्रा यादगार रहेगी, आप वो सारी चीज़ें कर पाएंगे जो आप घर से सोच कर आए हैं कि हाँ मैं यहाँ जाऊँगा, ऐसे करूँगा, तो वो सब चीज़ें उसी वजह से फिर कामयाब होती हैं जब आपकी चिकित्सा सही हो, आपकी सेहत सही हो। अगर आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं, अगर आप कोई दवाई ले रहे हो, तो उसको डिसकंटिन्यू ना करें। अपने साथ उन दवाइयों की पर्याप्त मात्रा लाइए और उनका सेवन करना जारी रखिए। ख़ासकर जिनको चेस्ट पेन होती है या जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिनको दिल की बीमारियां हैं, सांस की बीमारियां हैं, उन श्रद्धालुओं से, उन मेहमानों से हमारी यही आग्रह रहेगा उनसे कि कृपया करके अपने जो स्वास्थ्य है उस पर ध्यान दीजिए। जी, तो हम बात कर रहे थे श्री अमरनाथ जी यात्रा के मुतालिक, और श्री अमरनाथ जी यात्रा से मुतालिक चंद दिलचस्प और अहम मालूमात हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री अमरनाथ यात्रा की जो श्री अमरनाथ जी की पावन गुफा है, वो सतह समंदर से तकरीबन 3888 मीटर यानी 12756 फुट की बुलंदी पर वाक़ा है। हिंदू रिवायत के मुताबिक भगवान शिव ने इस गार में माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, जिस वजह से इस गार को बेहद मुकद्दस माना जाता है। रिवायत के मुताबिक गार की तरफ रवाना होते हुए भगवान शिव ने अपने मुख्तलिफ अलामती चीज़ें मुख्तलिफ मकामात पर छोड़ दिए, क्योंकि उनका मकसद यही था कि वो इबादत करें, उनका मकसद यही था कि वो ध्यान करें, क्योंकि उनको अपने आप को ज़्यादा महान बनाना था। पहलगाम में उन्होंने अपना बैल नंदी छोड़ा, चंदनवाड़ी में अपना जो उनके सर के ऊपर चांद का हिलाल रहता है वो छोड़ा, शेषनाग में उन्होंने जो उनकी गर्दन के इर्द गिर्द सांप होता है नाग, उसको छोड़ा। महागुना स्टॉप जो पहलगाम साइड से आता है, वहाँ पर उन्होंने श्री गणेश को पीछे छोड़ा, और पंचतरणी में पांच अनासिर यानी कि पांच चीज़ें जिनका कि जिक्र पुराणों में आता है, वेदों में आता है, उनको पीछे छोड़ा। वो है ज़मीन, पानी, आग, हवा और आकाश, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी। वो ध्यान करना चाहते थे, खुद को और ज़्यादा काबिल बनाना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने ये सब चीज़ें तर्क कर दी, ये सब चीज़ें अपने पीछे छोड़ दी और ध्यान करने के लिए माँ पार्वती के साथ उस पावन गार में, उस पावन गुफा में चले गए और वहाँ ध्यान करते रहे कई सालों तक। गार में बनने वाले कुदरती बर्फानी शिवलिंग पानी के कतरों के जमने से

0: अमरनाथ यात्रा पे आ रहे सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि यात्रा के रास्ते में टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे तक जा सकता है, इसीलिए अपने साथ वूलन कपड़े लेकर चलें। सफर के दौरान बारिश के आसार भी होते हैं, इसीलिए अम्ब्रेला, रेनकोट, विंड शीटर और वाटरप्रूफ शूज भी साथ रखना जरूरी है। याद रहे कि अपना आईडी कार्ड, यात्री परमिट और इमरजेंसी पर्पस के लिए एक नोट साथ रखें, जिसमें आपके सफर की तारीख पे ही जाने वाले किसी और यात्री का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल डीटीएच के साथ साथ हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स हैं हमारे प्रशासन के द्वारा जो जारी किए गए हैं, हमारे जो मेहमान, हमारे जो यात्री हैं उनकी सहायता के लिए, वो हम श्रीनगर और जम्मू के लिए जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो आप एक बार फिर नोट कर लीजिए। जो सामीन हमें देर से सुन रहे हैं, जो सुनने वाले हमारे साथ देर से जुड़े, उनकी जानकारी के लिए हम ये टेलीफोन नंबर्स, टोल फ्री टेलीफोन नंबर्स एक बार फिर से आप तक पहुंचा रहे हैं। अपना जो कलम और कागज़ है, डायरी है, उसको अपने हाथ में रखिए और हमारा ये जो है टोल फ्री नंबर है इसको नोट कीजिए। श्रीनगर के लिए टोल फ्री नंबर रहेगा 1800 180 7199। इसी तरह से जम्मू के यात्रीगणों के लिए टोल फ्री नंबर रहेगा 1800 180 7198। जी हाँ, श्रीनगर के लिए 1800 180 7199 और साथ ही जम्मू के लिए 1800 180 7198। टोल फ्री नंबर्स या हेल्पलाइन नंबर्स बनाने का एक ही मकसद होता है प्रशासन का कि किसी भी यात्री को, किसी भी मेहमान को किसी किस्म का कोई कष्ट ना हो। अगर कष्ट कोई हो भी तो हमारा जो प्रशासन है आपकी सेवा के लिए उपस्थित है। किसी भी सहायता के लिए आप उन तक पहुंच सकते हैं, अपनी बात उनसे कह सकते हैं और वो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द मुकर्रर वक्त पर आपकी इस परेशानी को दूर करें। और हम बात कर रहे थे जो श्री अमरनाथ जी यात्रा अभी चल रही है इसके कुछ दिलचस्प और बेहतरीन हकायक पर। इस सिलसिले में एक और बहुत ही ज़रूरी बात सामने ये आती है कि इस यात्रा को कामयाब बनाने के लिए जो यहाँ के लोकल लोग हैं, मकामी लोग हैं, जो बालतल या पहलगाम रूट्स पे जो आते हैं काम करने के लिए, चाहे वो रज़ाकार हों, चाहे वो घोड़े मालिकान हों, चाहे वो पालकी वाले हों, चाहे वो हमारा तिब्बी अमला हो, हेल्थ डिपार्टमेंट के अहलकार हों और ख़ुसूसी तौर पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार हों और कुल हम तौर पर जो इंतज़ामिया हो, वो एक बहुत ही बड़ा किरदार अदा करते हैं क्योंकि उनको इसके लिए कोई अलग से पे नहीं करता। वो बस आपकी सेवा के लिए, आपकी खिदमत के लिए वहाँ पर रहते हैं। ख़ासकर जो हमारे मकामी शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, उनका भी यही कर्तव्य है, उनका भी यही फ़र्ज़ है कि वो आपको अच्छी चीज़ दें, अच्छी दामों पर दें। हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स या कपड़े या बहुत सारी अशियाएँ बेचने वाले लोग स्टॉल्स लगाते हैं, रेड़ी पटरियों पे अपना सामान बेचने आते हैं, उनसे भी ये गुजारिश कि जो हमारे अतिथि हैं, मेहमान हैं, उनका ख़ास ख्याल रखें, उनको किसी चीज़ की शिकायत का मौका ना दें, उन्हें मुनासिब दामों पर अपनी चीज़ें फ़रोख्त करें। आपको मुनाफा कमाना है मगर उसकी एक हद है, क्योंकि कश्मीर माना ही जाता है मेहमान नवाजी के लिए। कश्मीर माना ही जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ही सॉबर हैं, और इसका उदाहरण हमें बार बार मिलता है। हम सोशल मीडिया पर जब देखते हैं तो हमें ये उदाहरण मिलता है कि किसी टूरिस्ट का कहीं पे पर्स गिर जाता है, कहीं पे पैसे गिर जाते हैं, कहीं पे उनका फ़ोन गिर जाता है, तो कैसे हमारा जो कश्मीर का भाईचारा है, कश्मीर की जो तहजीब है, अपना सबूत देती है, उनका वो टेलीफोन, उनका वो वॉलेट, उनके वो पैसे वापस उन तक पहुंचाते हैं। और यही हम सबको याद रखना है कि ये हमारे मेहमान, हमारे अतिथि, इनको किसी किस्म की कोई शिकायत, कोई कष्ट इनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हें बार बार फिर से आना है, इनको घूमने के लिए आना है, इनको फिर से अमरनाथ जी यात्रा के लिए आना है, तो इनके दिल में कोई मलाल नहीं रहना चाहिए। और जहाँ तक हम बात करते हैं दो रास्तों की, पहले पहलगाम रास्ते की बात करते हैं। पहलगाम रास्ता हालांकि जो बहुत ही लंबा रास्ता है बनिस्बते जो हमारा बालतल रास्ता है, हालांकि रास्ता लंबा है मगर आसान है, लेकिन जो बालतल का रास्ता है, जो बालतल की जानिब से जाता है, वो रास्ता छोटा है मगर कठिन है। अगर हम पहलगाम रूट की बात करें तो जम्मू श्रीनगर से पहलगाम जो बेस कैंप है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 48 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय करना पड़ता है। उसके बाद आपको चंदनवाड़ी, पहलगाम से जो पहलगाम का बेस कैंप है वहाँ से चंदनवाड़ी तक 16 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। उसके बाद आपको पिसू टॉप या जोजीबल जिसको कहते हैं वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। उसके बाद आपको आप पहुँचते हैं शेषनाग जो बेस कैंप से 13 किलोमीटर की दूरी पर वाका है। शेषनाग चंदनवाड़ी से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद जो है 14,500 फुट की ऊंचाई पर एक और टॉप आपको मिलता है, उसको कहते हैं महागुनस टॉप। जी हाँ, ये सबसे ऊंचा पॉइंट है। महागुनस टॉप जो है सबसे ऊंचा पॉइंट है इस पूरी यात्रा का, 14,500 फुट की ऊंचाई पर। उसके बाद आप पहुंचते हैं पंचतरणी जो महागुनस टॉप से 6 किलोमीटर की दूरी पर वाका है। वहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हैं, वहाँ पर एक बड़ा मैदान है जिसमें आप कुछ देर के लिए आराम कर सकते हैं। उसके बाद आप पहुँचते हैं संगम। संगम आप जो बालतल के मार्ग से जाने वाले यात्री हैं वो भी लास्ट में संगम पहुँचते हैं, और जो पहलगाम रास्ते से यात्री आते हैं वो भी आखिरकार संगम पहुँचते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि ये दो रास्ते वहाँ पे मिलते हैं, तो इसी वजह से इस स्पॉट का नाम, इस जगह का नाम संगम पड़ा है। संगम का मतलब ही होता है कि मिल जाना या मिलना। तो बालतल रास्ते या पहलगाम के रास्ते आने वाले जो यात्री हैं वो वहाँ पे मिल जाते हैं, तो इसका नाम इसी वजह से संगम पड़ा है। उसके बाद संगम से आपको पवित्र गुफा तक जाना होता है जो 3 किलोमीटर का रास्ता लगभग वहाँ से। जी तो ये जो रास्ता है पहलगाम की तरफ का, ये एक थोड़ा लंबा रास्ता है, और अगर आप चाहते हैं कि ये एक छोटे रास्ते से जाना चाहते हो तो आप जो है बालतल का रास्ता चुन सकते हैं। मगर बालतल वाला जो रूट है, जो ट्रैक है, वो काफ़ी काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, उसमें काफ़ी वो उसमें मेहनत लगती है। वहाँ से जो हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग हैं वो ना जाएँ तो बेहतर रहेगा। जो बालतल मार्ग है इसकी हम आपको जानकारी आगे देते हैं। पहले यहाँ पे रुकते हैं, भक्ति संगीत सुनते हैं, चंद इतलात सुनते हैं, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए।
2: बाबा बर्फानी के दर्शन है परम आनंद। इस आनंद का लुत्फ उठाने जब आए हैं तो साथ में नॉन प्लास्टिक पानी की बॉटल, खाने का सामान जैसे ड्राई फ्रूट्स, भुने हुए चने, गुड़ और चॉकलेट जैसा जरूरी सामान साथ रख लें ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। साथ ही अपने सामान में वैसलीन, कोल्ड क्रीम या सनस्क्रीन जरूर रखें ताकि आपकी स्किन ठीक रहे। ये भी ध्यान रखें कि सफर अकेले ना करें, ग्रुप में चलें ताकि आपके साथी हमेशा आपकी नजर में रहें। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन .com पर जाएं या फिर 14464 पर कॉल करें।

0: लखनऊ से आए हैं, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारी 19वीं यात्रा है। प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है और आप लोगों का प्रेम हम लोगों को फिर से एक बार खींच लाया है कश्मीर में। और यात्रा में भारी संख्या में यात्री आ रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, और आगे भी ऐसे ही कारवां चलता रहे ऐसी हम मनोकामना ईश्वर से करते हैं। और कश्मीर की खुशहाली के लिए महादेव से आशीर्वाद मांगेंगे कि कश्मीर की खुशहाली में दिनों दिन और तरक्की हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म हमारे यहाँ का बढ़े और लोग आकर कश्मीर की खूबसूरती को देखें, यहाँ के लोगों से मिले, यहाँ के लोगों के दिलों को जाने समझे। यहाँ के लोग बहुत ही हेल्पफुल लोग हैं, बहुत ही मेहनती लोग हैं, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है।
1: मैं गुजरात सूरत से आई हूँ और यहाँ पर पहली बार आई हूँ और कॉलने के द्वारा हमें बहुत बहुत सफल रहा। जितनी भी यात्रा हमने की है यहाँ पर बहुत ही आनंद में रही। यहाँ पे कोई भी अमान्य नहीं है, यहाँ पर सभी सामान्य और मान्य रख रहे हैं।
2: मेरा नाम है राजमुड़ी दत्ता, वी आर फ्रॉम कर्नाटका बेंगलुरु। As of now, all things are good. Things are running in a better way. They have done a better arrangement in terms of stay, in terms of food, like what we call as bandara. They have very lovely food. They served us good coffee, lunch. All things are great. We would request all the pilgrims to come and have a must visit to Amarnath Yatra.
3: And weather condition is also very favorable. And hygiene is also very good and it has been taken care very well. Administration is doing very well. Thank you. Good for come here, enjoy the shrine, have a good pilgrimage.
4: But Punjab sir, बहुत अच्छी सुविधा है। बस यही मैसेज है, बाबा की कृपा से मौसम साथ दे, किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी, बारिश, लैंडस्लाइड ना हो, जितने दिनों की यात्रा है वो अच्छे से निकले।
5: जी श्रोताओं, ये सब चीज़ें सुन के, ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस करके हमें भी हौसला मिलता है, हमें भी और काम करने और इस यात्रा को और सफल बनाने की प्रेरणा मिलती है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे विभिन्न भागों से, देश के और विदेश के विभिन्न भागों से मेहमान आते हैं, यात्रीगण आते हैं, उनकी सुविधा में किसी किस्म का कोई हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते। हमारी प्रशासन से भी यही विनती रहेगी कि जो इंतज़ाम हैं, जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं, उनमें किसी तरह का कोई बदलाव ना किया जाए। अगर इम्प्रूवमेंट हो सके तो इम्प्रूवमेंट कीजिए, अलबत्ता हमें शिकायत किसी से नहीं मिलनी चाहिए। फ़िलहाल के लिए आप हमारा ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए, हम आगे भी और ताज़ातरीन जानकारियाँ लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं।

जी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल और DTH के साथ साथ हमारा ये प्रसारण आप तक पहुंच रहा है OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।

11,701 पुरुष, 2,288 महिलाएं, 120 बच्चे, 116 साधु, 43 साध्वियां और जो सुरक्षा कर्मी हैं, सुरक्षा बल के अधिकारी, उनके उनकी जो कुल संख्या है वो 371 है। और ये आंकड़ा कुल मिलाकर 14,659 पहुँच चुका है आज दिन के 11:20 पे, जो अभी हमारे पास लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। और इससे पहले हम जो बात कर रहे थे, बात चल रही थी जो पवित्र गुफा जाने के दो रास्ते हैं, पहलगाम और बालतल के रास्ते। पहलगाम का रास्ता तो हमने समझ लिया कि कहाँ से कितना दूर है और कौन कौन से स्पॉट बीच में आते हैं। इसके बाद अब आते हैं हम अपने बालतल की रूट के जानिब। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि ये वाला रूट जो है, हालांकि ये लंबाई में काफ़ी कम है, मगर चढ़ाई में इसमें बहुत दिक्कत आती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। श्रीनगर से जब आप सोनमर्ग आते हैं, उसके बाद बालतल बेस कैंप पहुँचते हैं, उसके बाद जो पहला द्वार आपको आपके सामने आता है वो आता है दुमेल। यहाँ पे आपकी चेकिंग होती है, फ्रिस्किंग होती है, जो भी रेगुलर चेकिंग वगैरह होती है वो हो जाती है। उसके बाद आपको बरारी मर्ग जाना पड़ता है, बरारी मर्ग जो इस वाले बेस कैंप से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि ये वाला जो रास्ता है ये लगभग ठीक ही है, ये 6 किलोमीटर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जो आपका पहला पड़ाव रहता है, उसके बाद संगम, जिसके बारे में हमने पहले भी बोला कि जो पहलगाम का रास्ता और बालतल का रास्ता है जहाँ पे ये मिलता है तो उसको संगम कहते हैं। तो यही कुल मिलाकर जो रास्ता है संगम तक, इसमें आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि हमने पहले भी बोला कि बूढ़े बुजुर्ग या बच्चे इस रास्ते से जाना तरक्की करें, क्योंकि ये वाला रास्ता बहुत थका देता है आपको और इसमें फिसलन बहुत ज़्यादा है। अगर खुदा न खास्ता बारिशें हुई या मौसम ख़राब हो गया तो इसमें आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद 2 से 3 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा संगम से लेके पवित्र गुफा तक, और आप बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहलगाम और बालतल जो रूट्स हैं हमारे, इनका जो हमने आपको आंकड़े बताए। और इसके बाद जो रहता है वो हमारा दर्शन रिपोर्ट जो अभी हम तक आया, उसके मुताबिक 14,659 यात्रियों ने आज दिन के 11:20 तक पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए, और कुल मिलाकर 30,000 से जायद श्रद्धालु कल से इन दो दिनों में पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन कर चुके हैं। और यात्रियों के आने का सिलसिला भी काफ़ी देर से जारी है, और हम उनके वेलकम के लिए, उनके अभिनंदन के लिए यहाँ पर हाजिर हैं। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारे वॉलंटियर्स या जो भी रिलेटेड महकमे हैं, उनके अहलकार उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए हमेशा से उनके समक्ष उपस्थित रहेंगे। फ़िलहाल हमारा ये प्रसारण जारी है, आप सुनते रहिए और एंजॉय करते रहिए।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं और हम आप तक जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हमारे पास पहुंचती हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश में रहते हैं। अभी जो हमारे पास दर्शन रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक दिन के 11:20 तक 14,659 जो श्रद्धालु हैं यात्री हैं उन्होंने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए, जिनमें 11,721 पुरुष, 2,288 महिलाएं, 120 बच्चे, 116 साधु, 43 साध्वीज और 371 जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं वो उनके साथ थे। सुरक्षाकर्मियों और जो बाकी अमला होता है उनका यही काम होता है कि जो सुविधाएं हैं उनका इस्तेमाल सबको आना चाहिए, पानी कहाँ पे मिलेगा, हमारी जो हेल्थ के रिलेटेड फैसिलिटीज़ है वो कहाँ पे मिलेंगी, और अगर किसी भी किस्म की किसी यात्री को कोई असुविधा का सामना होता है तो उससे निकालने और उसमें उनकी मदद करने के लिए ये सब करना पड़ता है। यात्रियों से साथ ही गुजारिश ये है कि जैसा कि हम बार बार सुबह से कहते आ रहे हैं कि जो माहौल है वहाँ का, जो साफ़ सफाई का इंतज़ाम है उसको साफ़ रखें, अपने आसपास के जो जगहें हैं अगर आपके पास कोई कूड़ा है, कोई प्लास्टिक का बैग है या कोई भी बॉटल वगैरह है उसे डस्टबिन में डालें। रास्ते में आपको कई जगह डस्टबिन मिलेंगे और आपसे हम गुजारिश यहीं पे करते हैं कि जो डस्टबिन्स का इस्तेमाल है वो कीजिए, जो ड्राई वेस्ट आपके पास है उसको अलग डस्टबिन में और जो आपके पास वेट वेस्ट है उसको एक अलग डस्टबिन में डालें, क्योंकि माहौल का जो तहफ़ है वो हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले जो मेहमान हैं, आने वाले जो यात्री हैं उनके जो समक्ष में एक बेहतरीन माहौल, एक साफ़ सुथरा माहौल रखना है, क्योंकि वो भी एक आस, एक उम्मीद लेकर आए होते हैं कि हम बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, और जब वो खुदा न खास्ता रास्ते में कोई गंदी चीज़ देखेंगे तो उनके दिल को ठेस पहुंचेगी। ये जो श्री अमरनाथ जी यात्रा है ये न सिर्फ एक मज़हबी सफ़र है बल्कि हमें सब्र सिखाता है, क्योंकि जैसे हमने पहले बोला कि रास्ते काफ़ी कठिन हैं जो हमें सब्र सिखाती हैं, और ख़िदमत जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम करते हैं उनकी ख़िदमत का इसमें ज़िक्र आता है, और एक दूसरे का साथ। हमने ये बार बार बोला है कि आप अपने जेब में एक डायरी रखिए, उस पर अपना टेलीफ़ोन नंबर रखिए, अपना पता रखिए, और साथ में ही अपने किसी साथी का टेलीफ़ोन नंबर और पता रखिए, ताकि किसी आपदा में, किसी मुश्किल घड़ी में आपके वो मदद आए। और रूहानियत तो इस सफ़र में चारों ओर झलकती है, क्योंकि रूहानियत का सफ़र है, और अपनी जो मनोकामनाएं हैं, अपनी जो दुआएं हैं वो मन में लिए सारे श्रद्धालु आते हैं, बाबा बर्फानी के दरबार में जाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए वहां पे प्रार्थना करते हैं। हमारी ये प्रार्थना है कि हमारे जो सभी यात्रीगण हैं, हमारे जो मेहमान हैं वो सलामत रहें, और उनकी सलामती के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल और इसके अलावा डीटीएच और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। जो टोल फ्री नंबर्स हमने आप तक पहुँचाए थे, एक बार फिर से हम आप तक पहुँचाएंगे। इन टोल फ्री नंबर्स का उपयोग करके, इस्तेमाल करके आप किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन से राबिता कायम कर सकते हैं। श्रीनगर के लिए हमारा टोल फ्री नंबर रहेगा 1800-1807199। जी हाँ, 1800-1807199। इसी तरह से जम्मू के लिए टोल फ्री नंबर है 1800-1807198, जो कि है 1800-1907198। आप हमारे स्टेशन से या हमसे किसी भी शिकायत तक को पहुंचा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, या इस नंबर पर आप एसएमएस भी कर सकते हैं हमें। टेलीफोन नंबर है 9596-990-954 और हमारा ईमेल आईडी है akashvanibaltal@gmail.com। हमारा ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए। अभी तक जो हमारे पास ताज़ा तरीन दर्शन रिपोर्ट आया था, उसके मुताबिक जो है कुल मिलाकर आज सुबह के 11:40 तक कुल मिलाकर 15,000 के करीब श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए। श्रोताओं, अमरनाथ यात्रा की जो अमरनाथ गुफा जो है, हर साल कुछ ही मुद्दत के लिए, कुछ ही अरसे के लिए ज़ायरीन के लिए खोली जाती है, क्योंकि बाकी साल ये पूरा इलाका बहुत ही गहरे और शदीद बर्फ़ की वजह से नाकाबिले रसाई रहता है, यानी कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा कठिन है और बर्फ़ जो है साल हर साल यहाँ पर रहती है। हिंदू अकीदे के मुताबिक गार में मौजूद दो सफ़ेद कबूतरों का को मुकद्दस माना जाता है। रिवायत यह है कि ये कबूतरों का जोड़ा अमर कथा सुनने के बाद अमर हो गया। अगरचे इस रिवायत की तारीखी या साइंसी तहकीक अभी तक मौजूद नहीं है, मगर जो हिंदू अकीदा है उसके मुताबिक ये बिल्कुल मौजूद है और ये दोनों कबूतरों का जो जोड़ा है ये अमर हो चुका है। और हर साल जब यात्रा संपन्न होती है, आखिरी जब पूजा होती है, तो उसके बाद ये वहाँ पे दिखता है। यात्रा के दौरान हज़ारों रज़ाकार या जो वॉलंटियर्स होते हैं, ज़ायरीन को मुफ्त खाना, चाय, तिब्बी इमदाद और दीगर सहूलियात फराहम करते हैं। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा कश्मीर की मईशत में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि इससे मकामी लोगों को रोज़गार और कारोबार का मौका मिलता है। और इन रोज़गार और कारोबार करने वालों के समक्ष हमारी यही विनती है कि जो हमारे ज़ायरीन हैं, जो हमारे मेहमान हैं, इनके साथ अच्छा सलूक करें, इनको अच्छे कीमतों की चीज़ें दें, मयारी चीज़ें दें, क्योंकि ये फिर आगे जाता है और इससे अगर आप इनको कोई गलत चीज़ देंगे, कोई डिफेक्टिव चीज़ देंगे या कोई डुप्लीकेट चीज़ देंगे, तो उससे आप ही की रोज़ी पर फिर असर पड़ता है, क्योंकि ये फिर बाहर जाके आपकी शिकायत करते हैं कि देखिए कश्मीर में हमें ठगा गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस तरह की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, आगे भी बात होती रहेगी। फ़िलहाल के लिए आप भजन सुनिए और जैसे ही हम तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।

0: सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय दल भेजने के निर्देश दिए। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केको फुखिमोरी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर ले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated the new terminal building of Jodhpur Airport in Rajasthan. The project has been developed at a total cost of 480 crore rupees. Spread over an area of more than 23,000 square meters, The new terminal building is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. The inauguration of the new terminal building at Jodhpur Airport will provide a significant boost to tourism, trade and employment generation in the region. Mr. Modi also launched the modified Udaan scheme in Jodhpur. With an allocation of 28,840 crore rupees over the next 10 years, the scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. The bilateral investment agreement, or BIA, between India and Israel came into force today. The agreement was signed in September last year in New Delhi. The finance ministry said that the BIA is a landmark step towards strengthening bilateral economic relations and ensuring a secure and predictable investment climate. The ministry noted that the BIA is expected to contribute to increased cross-border investment activity and further deepen the economic partnership between India and Israel. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have paid tributes to Swami Vivekananda on his death anniversary today. In a social media post, Mr. Radhakrishnan described Swami Vivekananda as a great patriot, philosopher and spiritual visionary. He said that Swami Vivekananda rekindled India's civilizational consciousness and carried the timeless wisdom of the country to the world. Prime Minister Modi said that Swami Vivekananda's spiritual teachings will continue to provide the nation with renewed energy and direction in achieving the vision of a Viksit Bharat. Venezuela's Foreign Minister Juan Gil has expressed gratitude to the Government of India and Prime Minister Narendra Modi for their timely support and assistance in helping the victims of the devastating earthquake. Mr. Gil today visited the Indian Military Field Hospital established under Operation Amistad for providing treatment to those affected by the earthquake. It is providing free round-the-clock medical services to the people of Venezuela. Speaking on the occasion, Venezuela's foreign minister said that more than 400 people are treated daily at this field hospital. In Iran, preparations are underway for the six-day state funeral of the former supreme leader, Grand Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, which will begin in Tehran today. Senior Iranian leaders, military commanders and foreign dignitaries paid their respects to Ayatollah Ali Khamenei at Tehran's Grand Musalla. Among those present were President Masoud Pezeshkian, Parliament Speaker Mohammad Bakhir Khalibaf, Foreign Minister Abbas Araghchi and Revolutionary Guards Commander Ahmed Wahidi. India was represented by Governor of Bihar, Lieutenant General Sayyid Atta Hasnain and Minister of State for External Affairs, Pavitra Margarita. The funeral procession will continue over the next few days before concluding with his burial in the holy city of Mashhad on the 9th of this month. Public mourning will continue for 40 days thereafter. The Union Home Ministry has designated 23 individuals based in Pakistan as terrorists under the Unlawful Activities Prevention Act, or UAPA. They were

0: to Jaish-e Mohammed, Lashkar-e-Tayyaba and other organizations. These individuals were designated as terrorists for their involvement in various activities, including infiltration, recruitment, supply of arms and planning attacks in Jammu and Kashmir. This will allow agencies such as the National Investigation Agency to block their finances, impose embargo on arms sale and seize their assets. India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, West Madhya Pradesh and Orissa for today. The weather agency predicted heavy rainfall conditions over the northeast India, Chhattisgarh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Marathwada, West Rajasthan and southern parts of the country today. In men's cricket, the second T20 international between India and England will be played in Manchester today. The match will begin at 7 this evening Indian time. The opening game of the 5-match series was abandoned due to rain at Chester Le Street. And in the FIFA World Cup, Colombia defeated Ghana 1-0 in the final round of 32 match at Kansas City Stadium in the US to book their place in the next round. John Arias scored the winner in the 14th minute with a close range finish. Colombia will now face Switzerland in the round of 16. And that is the end of this news bulletin.
1: आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी श्रीनगर का FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन EIR की अमरनाथ या आराधना चैनल, जिस पर आप अमरनाथ यात्रा का विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। DTH पर हम आपसे मुखातिब हैं और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप हमारा ये प्रसारण भी सुन रहे हैं। श्रोताओं, हर साल मुख्तलिफ उम्र, ज़बान, सकाफत और रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस यात्रा में शरीक होते हैं, जो कौमी यकजहती की खूबसूरत मिसाल पेश करते हैं। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक मल्टी डाइवर्स मुल्क है। यहाँ मुख्तलिफ रंग, नस्ल, ज़बान, सकाफत और मुख्तलिफ किस्मों के रंग और नस्ल के लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं। इसीलिए हमारा मुल्क पूरी दुनिया में माना जाता है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया में। इसी वजह से कि यहाँ पे हम एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, एक दूसरे का आभार करते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। अब रही बात अमरनाथ यात्रा पर जाने के दौरान, आपको जो है बुलंद पहाड़ी इलाकों में से जाना पड़ता है, जहाँ ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है। और हमने आपसे पहले भी एक बार बोला है कि इस दौरान अगर आपके स्वास्थ्य में कोई मसला है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, आपको हृदय की बीमारी है या सांस फूलने की बीमारी है, तो कृपया करके पहला अपना चेकअप करवाएं। अगर आपको आपका डॉक्टर अलाउ करता है तो उसके बाद ही आप इस यात्रा के लिए आएँ, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने के वजह से आपकी जो पूरी यात्रा है वो ख़राब हो सकती है। सेहत के हवाले से हमें एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी सेहत ख़राब हो गई फिर हम यात्रा नहीं कर पाएंगे, अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पर चिकित्सा के जो इंतज़ाम हैं, चिकित्सा की जो व्यवस्था है, उसका बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया गया है। इस तरह की कोई घटना होती है तो तुरंत आपके समक्ष जो सेहत विभाग से जुड़े अफराद हैं वो आप तक पहुंचते हैं, आपको फौरन अस्पताल पहुंचाते हैं, डिस्पेंसरी पहुंचाते हैं और आपकी मदद करते हैं। यात्रा के लिए जो पुलिस है, फ़ौज है, तिब्बी अमला है, डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है और दीगर इदारे हैं, वो मुश्तरक तौर पर काम करते हैं। और इनका एक साथ काम करना लाजमी भी है, ज़रूरी भी है, क्योंकि एक साथ जो काम होता है वो अलग अलग नहीं होता, क्योंकि जब हम एक साथ मिलके कोई काम करते हैं तो वो काम पूरा भी होता है और वो काम परफेक्ट भी होता है। फ़िलहाल के लिए आप हमारा ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए, जैसे ही हम तक ताज़ा तरीन अपडेट्स पहुंचती हैं यात्रा के हवाले से तो हम आप तक पहुंचाएंगे। फ़िलहाल के लिए आप भजन सुनिए।

0: का लुत्फ उठाने जब आए हैं तो साथ में नॉन प्लास्टिक पानी की बॉटल, खाने का सामान जैसे ड्राई फ्रूट्स, भुने हुए चने, गुड़ और चॉकलेट जैसा जरूरी सामान साथ रख लें ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। साथ ही अपने सामान में वैसलीन, कोल्ड क्रीम या सनस्क्रीन जरूर रखें ताकि आपकी स्किन ठीक रहे। ये भी ध्यान रखें कि सफर अकेले ना करें, ग्रुप में चलें ताकि आपके साथी हमेशा आपकी नजर में रहें। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पर जाएं या फिर 14464 पर कॉल करें।
1: श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा। इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें, भोले का नाम ले और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR की आराधना चैनल और DTH के साथ साथ ये प्रसारण आप तक पहुंच रहा है OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। हमने आपके साथ साझा किए थे चंद हेल्पलाइन नंबर्स जिन पर आप संपर्क करके प्रशासन से किसी भी तरह का कोई सवाल पूछ सकते हैं। श्रीनगर के लिए हमारा टोल फ्री टेलीफोन नंबर रहेगा 1800-1807199 और इसी तरह से जम्मू के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1807198। हमारा जो स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप या SMS के ज़रिए हम तक कोई भी बात अपनी पहुंचा सकते हैं, लेकिन याद रहे कि सिर्फ इस पर व्हाट्सएप या SMS कीजिए, कॉल इस पर मेहरबानी करके ना कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो टेलीफोन नंबर भी नोट कर लीजिए, टेलीफोन नंबर है 9596-990-954। इसके अलावा ईमेल के साथ हमसे जुड़ सकते हैं आप, akashvanibaltal@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है। इस पर भी आप अपनी कोई भी बात हम तक पहुंचा सकते हैं और हम खुशी से आपकी बात बाकी सुनने वालों तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि प्रशासन तक भी आपकी ये बात पहुंचे। श्रोताओं, जो बहुत सारे अकीदतमंद आते हैं यात्रा के लिए, उनका शौक होता है कि ज़िंदगी में कम से कम एक बार हम बाबा भोले के दर्शनों के लिए आएँ और उनके समक्ष खड़े होकर अपने जो भी उनके अंदर उनके हृदय में जो होता है, भार होता है, कोई दुआ होती है, कोई मलाल होता है, वो एक बार उनके सामने जाकर प्रकट करें। तो कोशिश कीजिएगा एक बार कम से कम ज़िंदगी में बाबा भोले के दर्शनों के लिए आने की। और अमरनाथ यात्रा न सिर्फ एक मंजिल तक पहुँचने का रास्ता है, नाम है, बल्कि ये सब्र, बर्दाश्त, खिदमत, भाईचारे और रूहानी वाबस्तगी का एक मुनफरिद तजुर्बा भी आपको कराएगा। फिलहाल के लिए हमारे पास जो अपडेट्स हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दर्शन रिपोर्ट, जो हम तक आखिरी दर्शन रिपोर्ट आया था उसके मुताबिक लगभग 15,000 के करीब यात्रियों ने आज दिन के 12 बजे तक पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए थे। और जैसे ही ये आंकड़ा आगे और बढ़ता है, जैसे इसमें वृद्धि आती है, हम आप तक वो जानकारी भी पहुंचाते जाएंगे और मज़ीद जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी आप तक पहुंचाते जाएंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मेरी सह उद्घोषक, वो आगे का ट्रांसमिशन जो है वो आपके साथ रहेंगी शाम के 6 बजे तक। फ़िलहाल के लिए मुझे अनुमति दीजिए, मेरी आपसे किसी और दिन भेंट होगी, मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आप सुनते रहिए ये विशेष प्रसारण।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के FM बालतल 103.7 MHz पर और FM पहलगाम 100.1 MHz पर और मैं हूं आपकी उद्घोषक शाही नरेश जुड़ चुकी हूं आपके साथ बराबर आपका आपकी सेवा मैं उपस्थित रहूंगी 6 बजे तक और आप इस विशेष प्रसारण को समाप्त करते हैं DTH की आराधना सर्विस एवं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर के आराधना चैनल पर भी और साथ ही साथ हम DTH पर भी उपस्थित रहेंगे आपके लिए और वीवर्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम दस्तियाब हैं। जी हाँ, यात्रा जो हमारे पास 11 बजे तक का दर्शन अपडेट आया है आपके साथ साझा करना चाहेंगे। ये 11 बजे तक 14,659 यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन पाए हैं और संख्या की बात करें तो पुरुषों की संख्या है 11,721, महिलाएं 2,288, बालक 120, साधु 116, साध्वी 43 और सिक्योरिटी फोर्सेस यानी सुरक्षा कर्मचारी जो है 371। ऐसे कुल मिलाकर जो है संख्या रही है जिन्होंने 11 बजे तक बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए हैं 14,659। तो और भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे संग।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, डीटीएच की आराधना सर्विस एवं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर की आराधना चैनल पर भी हम उपस्थित हैं आपकी सेवा में, और साथ ही साथ आप हमें डीटीएच पर भी सुन रहे हैं और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम आपके लिए दस्तियाब हैं। जी हाँ श्रोताओं, आपको बता दें सायका सलीम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अभी हम आपको जो है एक अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, यात्रियों का अपडेट जो प्रातः 3:30 पर जम्मू भगवती नगर से के बेस कैंप से निकले हैं। जो थर्ड तीसरा जत्थे को रवाना किया गया, कुल संख्या रही है 4,812 तीर्थ यात्रियों को जम्मू भगवती नगर से घाटी की ओर रवाना कर दिया गया प्रातः 3:30 पर। और पुरुषों की संख्या की बात करें, पुरुषों की संख्या रही है 3,434, महिलाएं 966, बालक 11, साधु 244, साध्वीज 157, कुल मिलाकर संख्या बंदी है 4,812 की, और 259 वाहनों में इनको रवाना कर दिया गया जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से घाटी की ओर। और जो है इसकी तफसील से आप सायका सलीम से सुनिए, जो पुरुषों की संख्या रही है जिनको बालतल और पहलगाम दो रस्तों से रवाना किया कर दिया गया। जी सायका
1: जी, शाहिन जी, हम बता दें अपने श्रोताओं को कि बालतल के मार्ग से कुल मिलाकर 2,041 तीर्थ यात्रियों को रवाना कर दिया गया 126 छोटे बड़े वाहनों में, जिनमें पुरुषों की संख्या 1,404, महिलाएं 424 जी, बालक 5, साधु 139 और साध्वी जो हैं वो 69 रहीं। और पहलगाम की बात करें तो पहलगाम के मार्ग से कुल मिलाकर 2,771 तीर्थयात्रियों को रवाना कर दिया गया, जिनमें पुरुषों की संख्या 2,030, महिलाएं 542, बालक 6, साधु 105, साध्वी 88, और इनको कुल मिलाकर 133 छोटे बड़े वाहनों में रवाना कर दिया गया।
0: जी हाँ, श्रण के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ वर्जन्स आप सबके लिए।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जहां श्रोताओं आपको बता दें, अगर आप दर्शन के लिए बालतल के मार्ग से जा रहे हैं तो आप हमें ट्यून कर सकते हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अगर आप दर्शन

0: बताना देना चाहेंगे कि
1: जी
0: अभी आज 12 बजे तक कुल मिलाकर 8,192 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोले के दर्शन जो हैं किए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 6,100, महिलाएं 1,640, बालक 123, साधु 92, साध्वी 3 और ट्रांसजेंडर 10, और इसके साथ साथ सुरक्षा कर्मी जो है 221 इसमें इनमें शामिल हैं।
1: जी
0: और हम अपने
1: श्रोताओं
0: को ये भी
1: चाहेंगे।
0: बताना चाहेंगे कि आप हमारे हेल्पलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिनमें आप अपने सुझाव, अनुभव या विचार जो है हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9596990954,
1: जी
0: 9596990954।
1: लेकिन इसके साथ श्रोताओं को हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो सहायिका ने नंबर बताया आपको, इस पे आप सिर्फ टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल ना कीजिए प्लीज़। और साथ ही साथ
0: वॉइस मैसेज भी
1: बिल्कुल बिल्कुल, और साथ साथ टोल फ्री नंबर भी है हमारे, जो है श्रीनगर के लिए 1800-1807-7199, या और जम्मू के लिए 1800-1807-198।
0: और इसके अलावा
1: बिल्कुल
0: हम अपने श्रोताओं को ईमेल आईडी भी जो है दे रहे हैं, जिसके जरिए वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो है aakashvanibaltal@gmail.com, aakashvanibaltal@gmail.com।
1: जो भी आप बताना चाहेंगे तो आप इन्हीं नंबर्स जो हमने दी यात्रा के, जो भी आपको, अगर आपको कोई भी दुविधा आती है, कोई भी आपको ज़रूरत पड़ती है, तो आप इन फ़ोन नंबर्स पे या आप जो हमने टोल फ्री नंबर्स दिए आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। तो पल पल के अपडेट्स के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए कुछ भजन्स।

अमरनाथ यात्रा पे आ रहे सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि यात्रा के रास्ते में टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे तक जा सकता है, इसीलिए अपने साथ वूलन कपड़े लेकर चलें। सफर के दौरान बारिश के आसार भी होते हैं, इसीलिए अम्ब्रेला, रेनकोट, विंड शीटर और वाटरप्रूफ शूज भी साथ रखना जरूरी है। याद रहे कि अपना आईडी कार्ड, यात्री परमिट और इमरजेंसी पर्पस के लिए एक नोट साथ रखें, जिसमें आपके सफर की तारीख पे ही जाने वाले किसी और यात्री का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें। श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहाँ का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।

0: श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा। इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहें। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम लें और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।
1: बाबा बर्फानी के दर्शन है परम आनंद। इस आनंद का लुत्फ उठाने जब आए हैं तो साथ में नॉन प्लास्टिक पानी की बॉटल, खाने का सामान जैसे ड्राई फ्रूट्स, भुने हुए चने, गुड़ और चॉकलेट जैसा जरूरी सामान साथ रख लें ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। साथ ही अपने सामान में वैसलीन, कोल्ड क्रीम या सनस्क्रीन जरूर रखें ताकि आपकी स्किन ठीक रहे। ये भी ध्यान रखें कि सफर अकेले ना करें, ग्रुप में चलें ताकि आपके साथी हमेशा आपकी नजर में रहें। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पर जाएं या फिर 14464 पर कॉल करें।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: बिहार के हिस्से के तौर पर उपराष्ट्रपति भवन में इंदिराजी अमल में मदद की।
1: SIR is a big exercise undertaken by our election commission to strengthen the democracy. Every real voter should get registered. This is a good reform and it is a must to strengthen the democracy. Every citizen of our country should coordinate and cooperate with the election commission. That is my humble request to all my brothers and sisters of Mother Bharat.
0: सरकार ने नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकारी जराये के मुताबिक हुकूमत ने टेलीग्राम से कहा है कि वो OTT पर कंटेंट और फिल्मों की नकल के खिलाफ फौरी इकदामात करे। जराये के मुताबिक मजीद बताया जराये ने कि टेलीग्राम से 15 दिन के अंदर इकदामात की रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। इस इकदाम का मकसद भारत की क्रिएटर मईशत, फिल्म इंडस्ट्री, OTT प्लेटफॉर्म्स, नशर करने वालों, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को तहफ्फुज़ फराहम करना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी कुमार ने एतमाद जाहिर किया है कि अहमदाबाद और मुंबई को मिलाने वाला पूरा हाई स्पीड कॉरिडोर 2019-29 तक मुकम्मल हो जाएगा। वो अहमदाबाद में नामानिगारों से गुफ्तगु कर रहे थे, जहां उन्होंने गुजरात में रेलवे के जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का जायजा लिया था। जनाब अश्विनी कुमार ने यह भी कहा कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है और गुजरात सेक्शन में 80% काम पहले ही पूरा हो चुका है। रेलवे के वजीर ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क का काम मरहलावार तरीके पर किया जा रहा है। सूरत को बिलमोरा से जोड़ने वाला पहला सेक्शन अगले साल शुरू किए जाने का प्रोग्राम है।
2: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: भारत और इसराइल के दरमियान बाहिमी सरमायाकारी से मुतालिक समझौता आज से नाफिज हो गया है, जिस पर नई दिल्ली में पिछले साल सितंबर के महीने में दस्तखत किए गए थे। वजारत खजाना ने कहा है कि यह समझौता बाहिमी इकतसादी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की सिमत में नहायत अहम कदम की हैसियत रखता है। वजारत ने यह भी कहा है कि इस बाहिमी समझौते से दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी की सरगर्मियाँ बढ़ने की उम्मीद है। मौसमियात के महकमे ने बताया है कि अगले 4 दिन के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के गुजरात के कुछ और हिस्सों, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बाकी हिस्सों में मजीद आगे बढ़ने के लिए साजगार हालात पाए जाते हैं। इसी दौरान आज कौमी राजधानी में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को हबस और गर्मी से कुछ राहत मिली। मर्दों की क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे T20 बैन अलावामी मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच, जो चेस्टर स्ट्रीट में खेला जाना था, बारिश के सबब इसे तर्क करना पड़ा था। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत के पहले पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स और मरबूत ग्रीन फील्ड को कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का इफ्तिताह भी किया। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी सरगर्मियों के रोकथाम के कानून UAPA के तहत पाकिस्तान में मुकीम 23 अफराद को दहशतगर्द करार दिया है। मरकज ने बड़े पैमाने पर नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। उससे 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करने को भी कहा गया है। भारत और इसराइल के दरमियान बाहिमी सरमायाकारी समझौता आज से अमल में आ गया है। IMD ने कहा है कि अगले 4 रोज के दौरान जुनूब मगरबी मानसून गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मजीद आगे बढ़ जाएगा। और मर्दों की क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे T20 बैन अलावामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया।

0: उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे सांणंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज CG सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

0: जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
2: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे

0: के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
1: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लिए लियोनल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz पर, DTH की आराधना सर्विस एवं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर के आराधना चैनल पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। और साथ ही साथ आप हमें DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी सुनते हैं। जी हाँ श्रोताओं, आपके साथ एक अपडेट जो है हम साझा करना चाहते हैं। ये अपडेट है, दोपहर 1 बजे तक तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए हैं। कुल संख्या रही है 9,776। जी हाँ, 9,776 बाबा के भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। तो संख्या की बात, मेल्स ये जो है पुरुष संख्या रही है 7,300, महिलाएं 1,970।

हर बालक 147 साधु 100 साध्वीज 4 ट्रांसजेंडर 15 और सुरक्षा कर्मचारी की बात करें तो ये इनकी संख्या रही है 240। तो कुल मिलाकर संख्या बनती है 9776 बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त किए हैं 9776 तीर्थ यात्रियों ने। तो पल पल के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए कुछ वजन साहब के लिए।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओं, पल पल के अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। तो अभी हमारे फोन लाइन पर जुड़े हैं रामबन से मोहम्मद तस्कीन, इनसे लेते हैं राष्ट्र राजमार्ग के बारे में क्या कुछ अपडेट्स है इनके पास, आइए जानते हैं। जी तस्कीन साहब।
1: जी, राष्ट्रीय राजमार्ग बिल्कुल ट्रैफिक के लिए बहाल है, ट्रैफिक चल रहा है। और जो श्री अमरनाथ यात्रा का आज तीसरा जो बैच आज जम्मू से सुबह कश्मीर की तरफ छोड़ा गया, वो बिल्कुल यहाँ बानहाल के इलाके से होकर कश्मीर की तरफ निकल गए, जिसमें 4,812 यात्री, आज 260 के करीब गाड़ियां थी। तो इसी तरह जो कश्मीर वादी से वापस जो श्री अमरनाथ यात्री बालतल और पहलगाम से जो जिनने दर्शन किए हैं, तो वो आज पहला उनका जत्था जो है वो भी पहले बालतल वाला ट्रैफिक जो है वो गुजारा गया यहाँ से जम्मू की तरफ, और उसके बाद जो पहलगाम के जो रूट से ट्रैफिक आ रहा था, तो उससे भी जम्मू की तरफ रवाना किया गया। दोनों के लिए ये जो इस साल कुछ तब्दीलियां लाई गई है, पहले हाईवे पर जो लंगर कायम किए गए हैं श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए चंद्रकूट और बानहाल में, लामर ग्राउंड बानहाल में और चंद्रकूट के इलाके में, तो वहां पर पहले दोनों जगहों पर जो ट्रैफिक को रोका जाता था दोनों तरफ से जब भी यात्रा आती थी, तो अब वो थोड़ा तब्दील किया गया है, क्योंकि ये शायद टाइम को कम करने के लिए, क्योंकि दो काफिले अलग अलग ये वक्से से चलते हैं, करीबन 20-25 मिनट का इनमें फासला होता है, तो उस वजह से उस चीज को देखते हुए जो इंतजामिया उनने इस साल जो पवित्र गुफा की तरफ जाने वाले यात्री है, तो उन्हें जो बालतल के रास्ते जा रहे हैं उन्हें सिर्फ बानहाल में रोका जाता है, जो पहलगाम के रास्ते जो दूसरे दर में आते हैं तो उन्हें रामबन में रोका जाता है, जहाँ पर उनको नाश्ता वगैरह या किसी को चेकअप वगैरह डॉक्टर्स के पास जो रखे गए हैं मेडिकल फैसिलिटी पूरी इंतजामिया की तरफ से, पानी खाने पीने का तो जो इंतजाम है वो तो लंगरों की तरफ से, लेकिन जो बाकी सेहत सफाई का निजाम है या डॉक्टर्स का अवेलेबल रखना है या बाकी जो बिजली पानी की जो इश्यूज है, तो वो सब इंतजामिया देख रहे हैं और बहुत अहसम तरीके से तमाम निजाम चल रहा है। इस दौरान जो शहरा पर जो कट ऑफ टाइमिंग रखी गई है, जो एलएमवीज हैं जो मुसाफिर गाड़ी है उनके लिए, उन्हें ये बार बार जो रोजाना की बुनियादों पर ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स की तरफ से ये जारी की जाती है, जिसमें नगरोटा से सुबह 7 बजे से 12 बजे तक यानी यात्रा निकलने के बाद जो है वो एलएमवीज को चलने की इजाजत दी जाती है, और जो भी कश्मीर आने के ख्वाहिशमंद लोग हों तो वो 7 और 12 के दरमियान नगरोटा क्रॉस करना है उन्हें, और उसके बाद जखेनी उधमपुर उन्हें 8 बजे से सुबह और दोपहर के 1 बजे तक क्रॉस करना है, जबकि कश्मीर से जो जम्मू जाने वाले जो मुसाफिर गाड़ी है उन्हें सुबह 11:30 बजे बाद ही जब यात्रा बानहाल काजीगुड टनल पार करती है कश्मीर की तरफ जाती है, उसके बाद 11:30 बजे से काजीगुड से जम्मू की तरफ जो ट्रैफिक होता है मुसाफिर गाड़ियों का उन्हें छोड़ दिया जाता है, जबकि जो ट्रक उसके बाद चलाए जाते हैं तो ट्रक वालों से ये उन पर ये

अमरनाथ यात्रा पे आ रहे सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि यात्रा के रास्ते में टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे तक जा सकता है, इसीलिए अपने साथ वूलन कपड़े लेकर चलें। सफर के दौरान बारिश के आसार भी होते हैं, इसीलिए अम्ब्रेला, रेनकोट, विंड शीटर और वाटरप्रूफ शूज भी साथ रखना जरूरी है। याद रहे कि अपना आईडी कार्ड, यात्री परमिट और इमरजेंसी पर्पस के लिए एक नोट साथ रखें, जिसमें आपके सफर की तारीख पे ही जाने वाले किसी और यात्री का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें। श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ न करें जिससे वहाँ का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।

श्रोताओं, आप बने हुए हैं श्री अमरनाथ जी के विशेष प्रसारण में हमारे संग। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक क्रम में हम हमारे संवाददाताओं के साथ जुड़ते हैं और यात्रा से जुड़े अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं।

0: ताकि आपकी यात्रा सुखद तरह से चलती रहे और सफल रहे, यही हमारा प्रयास भी है और प्रार्थना भी। और अब हमारे साथ फोन लाइन के द्वारा जुड़ चुके हैं भगवती नगर जम्मू से हमारे वरिष्ठ संवाददाता जावेद मेहराब। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ ताज़ा जानकारी है इनके पास। जी जावेद।
1: पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा के श्रद्धालुओं का बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाने का उत्साह आज तीसरे रोज भी देखते ही बनता है। यहाँ जम्मू में आज तेज धूप गर्मी के साथ उमस भी बराबर पिछले दो दिनों से लगातार जारी है, लेकिन श्रद्धालु शहर में कदम रखते ही रजिस्ट्रेशन कराने में जुट जाते हैं। पहले टोकन, फिर रजिस्ट्रेशन, मेडिकल चेकअप, RIFD कार्ड्स, तमाम तरह की प्रक्रियाओं से गुजरकर श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए तारीख मिलती है और फिर यहां बनाए गए विभिन्न ट्रांजिट कैंप्स में उन्हें आराम के अलावा खाने पीने की सुविधाएँ भी मैसर है। श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन हो जाए और उसके अलावा उनके लिए बाबा बर्फानी के दर्शन जल्द से जल्द हो, यही उनकी मनोकामना है। हालांकि इस बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए एक सुनिश्चित तादाद ही पवित्र गुफा की तरफ जाए, इसलिए प्रशासन भी ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से श्रद्धालुओं के इस रश को बेहतर तौर पर मैनेज किया जाए ताकि श्रद्धालुओं के दर्शन भी हो और सुप्रीम कोर्ट की किसी भी तरह से अवमानना ना हो। बात पवित्र गुफा की तरफ जाने की करें तो जो श्रद्धालु हैं वो अपनी डेट पर पहले बेस कैंप भगवती नगर पहुंचते हैं ताकि बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए उनके सफ़र की शुरुआत हो। यहाँ बेस कैंप पर भी उन्हें सफ़र के दौरान किन बातों का ख्याल रखना है, सफ़र के दौरान ज़रूरी सामान और अच्छी सेहत के लिए योग भजन की ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि उनका ये कठिन और दुर्गम सफ़र आसानी के साथ पूरा हो सके। याद रहे कि यहाँ पहले बेस कैंप पर डिविजनल कमिश्नर की सरबराही में तमाम विभागों को यात्रा के लिए ड्यूटी लगाई गई है ताकि बिजली, पानी, खाने पीने और रहने और इस दौरान बेहतर सुविधाएं मिलती रहे। वहीं तवी रिवर फ्रंट का खूबसूरत नज़ारा यात्रियों को बेहतर पर्यावरण का सुकून देता है। यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सफाई कर्मचारी दिन रात सफाई अभियान में लगे हुए हैं ताकि सफाई सुथराई को भी यकीनी बनाया जा सके और ख़ास तौर पर प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन किया गया है। वहीं तीर्थयात्री लगातार ट्रेन और बसों के माध्यम से जम्मू पहुंच रहे हैं और श्रद्धालुओं का जोश जज्बे के साथ तीर्थयात्रा की तैयारी और जल्द से जल्द पहुंचने की को लेकर सख्त उत्साहित भी नज़र आ रहे हैं ताकि वो इस मुकद्दस यात्रा को और पर बेहतर तौर पर जा सकें और सुकून के साथ जा सकें। इस दौरान यहाँ के स्थानीय लोग यात्रियों और श्रद्धालुओं को बेहतर तौर पर अपनी पूरी तरह से सपोर्ट भी दे रहे हैं और उनकी मदद के लिए हरदम तैयार भी हैं। उम्मीद है ये यात्रा हमारी मेहमान नवाजी, हमारी संस्कृति को आगे भी यूं ही दर्शाती रहेगी।
0: जी जावेद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस विवरण के लिए।
2: जी श्रोताओं, क्षण क्षण के अपडेट्स के लिए हम यहाँ पे आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। तो अभी जो है फोन लाइन पे इमरान नायको हमारे साथ जुड़ चुके हैं पांथा चौक ट्रांजिट कैंप से। तो इमरान बताइए, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्या कुछ हो रहा है आपके ट्रांजिट कैंप में?
3: जी बिल्कुल, देखिए अमरनाथ जी यात्रा को लेके आज चूंकि जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से अमरनाथ जी यात्रियों का जो दूसरा बैच है, जो जत्था है, वो कश्मीर वैली की तरफ रवाना हुआ और इसमें यात्री बालतल और ननवान बेस कैंप की तरफ रवाना किए जा रहे हैं। वहीं श्रीनगर में भी यात्री पहुंच रहे हैं और आज तीसरा दिन है और अमरनाथ जी यात्री जो है वो

0: ट्रांजिट कैंप पांथा चौक श्रीनगर में आ रहे हैं और यहाँ नाइट स्टे कर रहे हैं, और जो कि हम सुबह भी हमने अपडेट किया था कि यहाँ यात्रियों के लिए हर साल की तरह इस साल भी हर तरह की सुविधा रखी गई है, खासकर लंगर यहाँ पे उसका एहतमाम किया गया है, सैनिटेशन का एहतमाम किया गया है। इसके अलावा यात्रियों की अगर कोई शिकायत है उसके लिए यहाँ पे एक सेटअप जो है वो इंस्टॉल किया गया है। गवर्नमेंट के मुख्तलिफ जो महकमों के जो अहलकार है, जो ऑफिशियल्स है, वो यहाँ पे तैनात है। पुलिस, CRPF, ट्रैफिक पुलिस, लाइन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो यहाँ अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ जो NGOs है वो अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और यात्रियों को कोशिश की जा रही है कि हर तरह की सुविधाएं हम पहुंचाए। और इसके अलावा आज सुबह से यहाँ ट्रांजिट कैंप से अमरनाथ जी यात्रियों के जो दो काफिले हैं वो पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किए गए, जिसमें मर्द और ख्वातीन, कुछ बच्चे भी शामिल थे और कुछ साधु और साध्वीज भी उसमें शामिल थी। और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि आज तीसरे रोज भी वही अलग ही समा है श्रीनगर शहर में, ना सिर्फ श्रीनगर शहर में बल्कि पूरी वादी कश्मीर में यात्रा को लेके, और यात्री बड़े पुरअमन तरीके से अमरनाथ जी गुफा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और आज सुबह से मैंने कई यहाँ के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं या जो असर शख्सियात है कश्मीर वैली की, उनसे यात्रा को लेके बात की, और बड़ा ही खुश उस वक्त हुआ कि जब उन्होंने यात्रा को लेके अपने तासुरात दिए हैं, जिनमें रिलीजियस जो नामवर शख्सियात है उन्होंने यात्रा को लेके जो अपनी कमेंट्स किया, और इवन ये भी कहा है कि जहां हमारी जरूरत पड़े यात्रियों की खिदमत के लिए, चाहे वो पानी हो, चाहे वो खाने पीने की चीज हो, या हमारे वॉलंटियर्स की जरूरत है, तो वो हम हर साल की तरह इस साल भी जो है बाहम रखेंगे, और इसके लिए उन्होंने अपने लोगों को या अपने वॉलंटियर्स को तैयार रखा है। इसके अलावा यात्रियों के साथ मुसलसल बात हो रही है, खासकर हर साल चूंकि कुछ नया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया जाता है, तो इस साल भी मैंने सुबह भी और इवन की कल शाम को भी बहुत सारे यात्रियों से जब बात की और यही पूछा कि आप पहली बार आ रहे हैं या आप इससे पहले भी आए हैं, जो नए पहली बार यात्री यहाँ पे आ रहे हैं तो उनका कहना है कि वो एक अलग ही एक्सपीरियंस कश्मीर पहुंच के कर रहे हैं, और खासकर अभी वो गुफा के दर्शन तक नहीं पहुंचे हैं, अभी चूंकि वो ट्रांजिट कैंपस में ही है, लेकिन जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके लिए सुविधाएं रखी है, वो काफी काबिले तहसीन है, या जिसको हम कहें कि वो बड़ा ही अप्रिशिएबल है। इसके अलावा जो यात्री पिछले 5 साल 10 साल 20 साल से यहाँ कश्मीर वैली आ रहे हैं और यात्रा की गरज से पवित्र गुफा के दर्शन के लिए, तो उनका भी एक्सपीरियंस यही है कि हर गुजरते साल के साथ कुछ नया ही देखने को मिलता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ इंतजाम रखे जाते हैं, और खासकर कि जो एक अच्छा मैकेनिज्म गवर्नमेंट की तरफ से हर साल रखा जाता है कि यात्रियों की कोई ग्रीवेंस ना हो, यात्रियों को शिकायत का कोई शिकायत करने का मौका ही ना मिले। हालांकि शिकायत का मौका अगर उनको मिले भी तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक ग्रीवेंस सेल रखा है, फिजिकली भी और ऑनलाइन भी, लेकिन अभी एज सच जो है कोई शिकायत ऐसी यात्री की नहीं आई है, और ये उनका कहना है कि इतनी अच्छी जो है यहाँ फैसिलिटीज रखी गई है, और मौसम भी आज बड़ा ही खुशगवार है, सुहाना है, और इस बेहतर और खुशगवार मौसम के बीच में यात्री जो है पवित्र गुफा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, और जम्मू से भी या मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप में अमरनाथ जी यात्री जो है वो पहुंच रहे हैं और उनका यहाँ पे इस्तकबाल किया जा रहा है।
1: बिल्कुल इमरान, यहाँ पे ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा नाइट स्टे तो वही पे आपके कैंप में ही हो रहा है, आप तो बहुत ही खुश नजर आते होंगे हमारे यात्री।
0: ऑब्वियसली देखिए, जैसे कि अब यात्रियों से हम बात करें, जो अभी मैं कह रहा था कि वो यात्री जो पहली बार आ रहे हैं उनका एक एक्सपीरियंस कुछ पल हो कुछ लम्हों का अलग है, लेकिन जो यात्री काफी समय से काफी टाइम से गुफा के दर्शन के लिए यहाँ आए हैं या आते हैं, तो वो भी अपने ख्यालात का इजहार या अपनी जो ओपिनियन है यात्रा को लेके, अरेंजमेंट्स को लेके, लोगों के व्यवहार को लेके, यहाँ की फिजा को लेके कुछ अलग ही है, और अलग इन द सेंस की बड़ा ही पॉजिटिव तरीके से वो अपनी एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से बाकी ट्रांजिट कैंप्स में यात्रियों के लिए एक अच्छी और खास जो है फैसिलिटीज रखी गई है, मैं समझता हूँ कि उससे ज्यादा शायद यहाँ श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप में, जहाँ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, SSP श्रीनगर, मुख्तलिफ महकमों के जो हेड्स हैं या जो

0: तमाम लोग हैं वो यात्रियों के पास जा रहे हैं, उनसे अरेंजमेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं। और नाइट स्टे हर साल की तरह इस साल भी रखा गया, और सबसे इंपॉर्टेंट कि सैनिटेशन का बड़ा खासा ख्याल रखा गया है, सफाई सुथराई का बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है। और उसके लिए हम देख रहे हैं कि एक तो गवर्नमेंट अपने तरीके से तो उस चीज का ख्याल रखी हुई है, लेकिन यात्री भी बड़ा ही उस चीज को लेके कॉपरेट कर रही है गवर्नमेंट के साथ भी, और इवन की जो यहाँ की मुख्तलिफ आम शहरी है वो भी इसमें जो है अपना हाथ बटा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये यात्रा जो है इस साल भी पुरअमन पुरअसन तरीके से बड़े पीसफुल मैनर में इख्तिताम पजीर हो। और फिलहाल अभी तीसरा दिन है, लेकिन जोश जज्बा वलवला और वो जो मजहबी हम आहंगी जिसको हम क्रिमिनल हारमोनी कहते हैं उसकी अकासी श्रीनगर में भरपूर मिल रही है।
1: तो हमारी भी यही कोशिश रहती है, हमारी जो यात्रीज है उनको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े, इसके लिए जो है प्रशासन हर साल जिस तरह लास्ट ईयर उन्होंने सुविधा रखी है उसे बहुत ज्यादा आज रखी है, इसीलिए हमारे यात्रीज बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो श्रोताओं, ये थे इमरान नायकू पांथा चौक ट्रांजिट कैंप से। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आप समाप्त कर रहे हैं और पल पल के अपडेट्स के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं आपके लिए। तो हमारे पास एक अपडेट आया है जो हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे श्रोताओं। जी हाँ, ये जो है 2 बजे का अपडेट है हमारे पास। तो 2 बजे तक जो 12,011 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए हैं, जिनमें पुरुष की संख्या रही है 8,850, महिलाएं 2,000

0: 1570, बालक 177, साधु 105, साध्वीज 4, ट्रांसजेंडर 15, सुरक्षा कर्मचारी 290। कुल मिलाकर संख्या रही है 12011 की, जिन्होंने 2 बजे तक बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। जी सायका
1: जी, बिल्कुल, आपने ये जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। और यहाँ पर हम ये भी बता दें श्रोताओं को कि रामबन ज़िले में पहुंचने वाले श्री अमरनाथ जी यात्री प्रशासन द्वारा जारी सुविधाओं और वहाँ लगाए गए लंगरों से बहुत ही प्रसन्न देखे गए। और वो सरकारी प्रशासन श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और लंगर और उसके प्रबंध का आभार व्यक्त कर रहे हैं कुछ इस तरह।
2: ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, शासन प्रशासन और यहाँ के शरणार्थी और सेवादाता सभी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। ऐसी व्यवस्था आप घर पे भी नहीं कर सकते हैं। आप घर में 4 आदमी बुलाइए तो 4 आदमी में नोट जोक जाएगी। जो कह रहा है कि व्यवस्था खराब है, आप खुद घर पे आप व्यवस्था करिए, यात्रा में आपको दिखता होता है।
3: मेरा नाम है, वृंदावन का रहने वाला हूँ। हम लोग सब अमरनाथ की यात्रा में आए हुए हैं। ये हमारा वृंदावन का लंगर लगा हुआ है। अच्छा इंतजाम है, सभी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए खाटी के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था है।
4: क्या पंजाब से हम बिलोंग करते हैं और कोई भी हमें दिक्कत नहीं आई। बहुत अच्छा इनका सिस्टम है, खाने के साथ खाना और रहने के साथ रहना सब कुछ बिल्कुल फ्री है। कोई हमें दिक्कत नहीं आई, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। हर एडमिनिस्ट्रेटर और सीईओ साहब का, स्पेशली सीईओ साहब का जो श्राइन बोर्ड के हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।
5: पहली बात तो मेरा नाम अमय है और मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई से। पूरा व्यवस्था देखा जाए तो बहुत अच्छा है और हर साल के मुकाबले ये बार ज़्यादा सिक्योरिटी है और ज़्यादा अच्छे से पूरा मैनेज किया जा रहा है और व्यवस्था बहुत अच्छी है ये बार की।
2: तो आप कहते हैं पूरा अच्छे लगते हैं, वो जर्नी भी सुपर है, सिक्योरिटी पूरा अच्छा है, जर्नी चला बहुत बहुत अच्छा है।

0: अगर इस वीडियो को स्किप करने से पहले बस एक
1: श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा, इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम

और योगा करिए ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम लें और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।

0: श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के साथ, और क्षण-क्षण की जानकारी लिए हम जो है आपके साथ जुड़ जाते हैं। और अभी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं रहीम रिजवान, फोन लाइन के माध्यम से गांदरबल से आप जुड़े हैं। आइए जानते हैं बालतल बेस कैंप से क्या कुछ अपडेट्स हैं इनके पास। जी रिजवान साहब
1: जी, सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल मार्ग से बड़ी खुश असलूबी से जारी है। बालतल से पवित्र गुफा तक अगर हम मौसम की बात करेंगे तो मौसम खुशगवार है, धूप खिली हुई है, बीच बीच में ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। इस बीच जो यात्री आज सुबह सवेरे दुमेल कंट्रोल गेट से पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुई है, उनमें से बहुत सारे यात्री गुफा तक पहुंचे हैं, जबकि दीगर यात्री पहुंचने वाले हैं। जो यात्री पवित्र गुफा तक पहुंचे उन्होंने पूजा अर्चना करके खुसूसी दुआएं की एवं शिवलिंगम का दर्शन करके वापस निकले। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 657 यात्री दर्शन करके वापस दुमेल कंट्रोल गेट पर पहुंचे। इन श्रद्धालुओं में 557 पुरुष, 80 महिलाएं, 5 बालक बालिका, 5 साधु, 1 साध्वी एवं 10 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। इस दौरान आज 11,700 यात्रियों को बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा की तरफ जाने की अनुमति दी गई, जिनमें 9,332 पुरुष, 1,993 महिलाएं, 95 बालक बालिका, 103 साधु, 35 साधियां तथा 142 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। गुफा जाने वाले श्रद्धालु ने ऊंचे पर्वतों के बीच मुख्तलिफ पड़ाव जिनमें दुमेल, ब्रारी मरक, पंचतरणी, काली माथा, लोअर केव एवं अपर केव काबिली जिक्र हैं, पार किया एवं वह गुफा पहुंचे। श्रोताओं, बालतल से पवित्र गुफा तक का ये सफर कठिन माना जाता है तथा पर्वतों के बीच चलने के दौरान अक्सर ऑक्सीजन की कमी होती है तथा इस कमी को दूर करने के लिए चिकित्सा विभाग ने हर पड़ाव पर ऑक्सीजन की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं एवं यात्रियों को जहां जरूरत पड़े उन्हें वहीं पर ऑक्सीजन सुविधाएं फराहम की जाती है। गर्ज तीर्थ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। अलबत्ता प्रशासन के द्वारा श्रद्धालुओं से बार बार ये अनुमति दी जाती है कि वह रजिस्ट्रेशन के बगैर सफर ना करें बल्कि पंजीकरण करने के बाद वह सफर शुरू करें ताकि बालतल पहुंचकर उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इधर मुख्तलिफ वाहनों में जो जथा आज सुबह सवेरे जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से घाटी की तरफ रवाना हुआ, उन्होंने श्रीनगर कारगिल राजमार्ग पर अपना सफर जारी रखा एवं उन्होंने ट्रांजिट कम शादीपुरा, ट्रांजिट कम मणिगाम, कांगन, गोंड तथा सोनमर्ग मार्केट पार किया वे अब बालतल पहुंचे, जहां उन्हें रात्रि विश्राम के बाद कल सवेरे दुमेल कंट्रोल गेट पर RFID कार्ड देकर पवित्र गुफा की तरफ जाने की अनुमति दी जाएगी। यात्रियों का ये पवित्र सफर सरल एवं आसान बनाने के लिए प्रशासन के द्वारा जगह जगह उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी गई हैं, जबकि

0: यात्रा रूट पर दोनों तरफ सुरक्षा कर्मी कड़े सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए गए हैं। श्रोताओं, यात्रियों की सुरक्षा के लिए यात्री कॉन्वॉय के दौरान किसी भी प्राइवेट वाहन को आगे पीछे या दाएं बाएं चलने की अनुमति नहीं दी जाती है, बल्कि इस दौरान सुरक्षा कर्मी हर चौराहे, कॉर्नर एवं छोटी बड़ी सड़कों तथा गली कोचों में चाकू चौबंद रहते हैं। इस तरह आज दूसरे रोज भी तीर्थ यात्रा खुश असलूबी से जारी है। हम भी आशा करते हैं कि आपकी ये तीर्थ यात्रा संपूर्ण तरीके पर सफल हो जाए।
1: जी, बहुत खूब। जैसा कि रिजवान साहब आपने कहा कि रास्ते जो है, मार्ग जो है, कठिन है, तो क्या वहां पर जो मौजूद व्यवस्थाएं हैं उनसे हमारे यात्री जो है प्रसन्न है?
0: बिल्कुल, जो भी वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे यात्री जो वापस आए हैं दर्शन करके, उनके साथ हमने बात की है, तो यात्रा या व्यवस्थाओं को लेकर वो काफी संतुष्ट हैं, क्योंकि प्रशासन ने हर पड़ाव पर उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं। अगर हम चिकित्सा की बात करेंगे, वो जगह जगह पे दस्तियाब रखी गई है, और इसके साथ साथ जो मॉनिटर कर रहे हैं, ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो भी सुरक्षा कर्मी है उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, रजाकार तंजीमें और दीगर जो अहलकार हैं वो भी वहां पे तैनात रखे गए हैं, ताकि यात्रियों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, और इस पवित्र सफर के दौरान जहां उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो वहां उन्हें वो मुहैया किया जाता है, ताकि ये जो उनकी तीर्थ यात्रा है वो सफल हो जाए।
1: जी रिजवान साहब, इस विवरण के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका।
1: जी श्रोताओं, हमारे साथ जुड़े थे रहीम रिजवान, गांदरबल के गांदरबल से, जो कि बालतल बेस कैंप की जानकारी जो है हमारे साथ वो लेके जुड़ चुके थे।
2: जी साइका, यहाँ पे एक और जो है इन्फॉर्मेशन, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन मैं सबके साथ, अपने श्रोताओं के साथ साझा करना चाहूँगी। गांदरबल जिला में बालतल मार्ग पर श्री अमरनाथ जी यात्रा शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से चल रही है। गांदरबल जिला प्रशासन, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, पुलिस, सुरक्षा बल और अन्य संबंधित विभाग यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने और सभी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है।
1: बहुत खूब।

2007 से लेकर थल यात्रियों पर मुश्तमिल तीसरा जत्था था, जिसमें 2030 पुरुष 542 महिला 105 साधु 88 साधवी और 6 बालक बालिका शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक गुफा में शिवलिंगम का दर्शन करने वाले यात्रियों की तादाद 25,000 तक पहुंच गई है। प्रशासन के द्वारा नुनवन बेस कैंप शीशनाग और पंचतरणी में यात्रा पे आए हुए भक्तों के आराम और खाने पीने के अलावा हैदत की सभी सुविधा बराबर उपलब्ध रखी गई है। ऊंचे पर्वतों पर यात्रा सुखद तरीके से अपना सफर जारी रखे हुए हैं, इसलिए इंतजामिया ने यात्रा के मुख्तलिफ रास्तों पर 25 अहम मुकाम पर 45 खुसूसी माउंटेन रेस्क्यू टीम्स भी तैनात की है, जिन्हें फ्लश फ्लड लैंडस्लाइडिंग और दीगर हंगामी हालात से निपटने के लिए खुसूसी तरबियत और जदीद रेस्क्यू आलात फराहम किए हुए हैं। इसके अलावा NDRF, SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस और नीम फौजी दस्तों के अहलकार भी मुख्तलिफ हसास मुकाम पर तैनात किए गए, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से कोई इमदाद और बचाव कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा सके। माहौलियात आलूदगी से बचने के लिए हर जगह शौचालय रखे गए और स्वच्छता को लेकर इस वर्ष

आनंद, इस आनंद का लुत्फ उठाने जब आए हैं तो साथ में नॉन प्लास्टिक पानी की बोतल, खाने का सामान जैसे ड्राई फ्रूट्स, भुने हुए चने, गुड़ और चॉकलेट जैसा जरूरी सामान साथ रख लें ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। साथ ही अपने सामान में वैसलीन, कोल्ड क्रीम या सनस्क्रीन में रहें। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन .com पर जाएं या फिर 14464 पर कॉल करें।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आप दर्शन के लिए बालतल के मार्ग से जा रहे हैं तो आप ट्यून करें एफएम बालतल 103.7, और अगर आप दर्शन के लिए पहलगाम के मार्ग से जा रहे हैं तो आप ट्यून करेंगे एफएम पहलगाम 100.1। डीटीएच की आराधना सर्विस एवं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर के आराधना चैनल पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। साथ ही साथ आप हमें डीटीएच और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सुनते हैं। श्रोताओं, आपको बता दें, जब भी कोई व्यक्ति अपने घर से किसी काम के लिए निकलते हैं तो वो जो है अपने मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयों को पाते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ उनके मार्ग में आती हैं। परंतु जब इरादा आपका अपनी मंजिल तक पहुंचने का होता है तब आप कोई भी कठिनाई से नहीं डर सकते। अभी आप विशेष प्रसारण यात्रा 2024 समाप्त कर रहे हैं तो तीर्थ यात्री भी एक श्रद्धा के साथ घर से निकलते हैं, इसी आशा के साथ कि तीर्थ यात्री भोले बाबा का दर्शन करें। और संभव है इसमें भी तीर्थ यात्रियों को बहुत सारी मुश्किलों यानी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हो, लेकिन सच्चे भगत वही हैं जो भोले बाबा के दर्शन पाना चाहते हों, वो किसी भी कठिनाई से नहीं डरेंगे बल्कि भोले बाबा का जाप करके आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी मंजिल पर पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। हमारी भी यही मनोकामना होती है कि तीर्थ यात्री कुशल मंगल से अपनी मंजिल तक पहुंचे और सफलता के साथ तीर्थ यात्रियों को शिव जी के दर्शन प्राप्त हो। तो हमारी यही मनोकामना है, शिव जी की कृपा सभी भक्तों पर बनाए रहे।
1: जी शाहिन जी, यहाँ पे हम अपने श्रोताओं से ये भी कहना चाहेंगे कि बालताल में जॉइंट कंट्रोल रूम से मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार दोपहर 12:30 तक पूरी यात्रा के मार्ग, जिसमें बालताल, दुमेल, रेलपत्री, ब्रारी मार्ग, संगम, काली माता, पंचतरणी, लोअर होली केव और पवित्र गुफा भी शामिल हैं, पर मौसम जो है बहुत ही सुहाना बना हुआ है। यहाँ तक कि हल्के फुल्के बादल भी हैं, जबकि तीर्थ यात्रियों के आने जाने के लिए सभी मार्ग पूरी तरह से जो है वो खुले हुए हैं। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो स्थिति जो है सामान्य है और सभी रास्तों पर यात्रा जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है जारी है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से ये चल रही है। और वहीं जिला प्रशासन ने तीर्थयात्रियों से निवेदन किया है कि वे यात्रा के लिए तयशुदा समय का प्लान करें। पवित्र गुफा की ओर जाने के लिए बालताल एग्जिट पॉइंट से निकलने का समय 9:00 तय किया गया है और इस समय के बाद किसी भी तीर्थयात्री को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और तीर्थयात्रियों से निवेदन है कि वे समय पर निकले, मौसम की जानकारी और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का प्लान करें और संबंधित अधिकारियों का पूरा पूरा सहयोग करें।
0: बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि यात्रा जो है, हमारे यात्री जो है सफलता के साथ बाबा भोले का दर्शन करके अपने घरों को लौटे सफलता के साथ, कामयाबी के साथ और स्वस्थ होकर। तो भजन सुनते हैं
1: जी, जी जी
0: और अपने श्रोताओं तक भी बहुत अच्छे से ये भजन

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्स, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्स, डीटीएच की आराधना सर्विस एवं आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी हम उपलब्ध हैं।
1: जी हाँ जुबैर, यहाँ पे ये भी हम साझा करना चाहेंगे कि हेल्पलाइन नंबर जो आपने कहा 9596990954 है, और श्रोताओं को ये कहना चाहेंगे इस पे आप सिर्फ टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन यानी कि कॉल नहीं। और साथ ही साथ ये भी श्रोताओं के लिए टोल फ्री नंबर भी प्रोवाइड किए गए हैं, श्रीनगर के लिए 1800-1807-199 और जम्मू के लिए 1800-1807-1918। और साथ ही साथ अपडेट हमारे पास आया है 3 बजे का, तो 3 बजे तक हमारे तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोले के दर्शन प्राप्त किए हैं। संख्या रही है 14,250 की, कुल जो है 3 बजे तक 14,250 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं। और पुरुषों की बात करें, पुरुषों की संख्या रही है 10,746 और महिलाएं 2,840, बालक 224, साधु 115, साध्वी 4, ट्रांसजेंडर 16 और सुरक्षा कर्मचारी 305। और कुल मिलाकर 3 बजे तक 14,250 तीर्थ यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। पल पल के अपडेट्स के साथ आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ भजन सुनवाते हैं।

यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।

0: श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा। इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम ले और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।
1: बाबा बर्फानी के दर्शन है परम आनंद। इस आनंद का लुत्फ उठाने जब आए हैं तो साथ में नॉन प्लास्टिक पानी की बॉटल, खाने का सामान जैसे ड्राई फ्रूट्स, भुने हुए चने, गुड़ और चॉकलेट जैसा जरूरी सामान साथ रख लें ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। साथ ही अपने सामान में वैसलीन, कोल्ड क्रीम या सनस्क्रीन जरूर रखें ताकि आपकी स्किन ठीक रहे। ये भी ध्यान रखें कि सफर अकेले ना करें, ग्रुप में चलें ताकि आपके साथी हमेशा आपकी नजर में रहें। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पर जाएं या फिर 14464 पर कॉल करें।

0: पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों
2: जी श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में हमारे संग। और इस वक्त हम बता दें, आज 4 बजे तक कुल मिलाकर 16,327 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोले के जो है दर्शन किए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 12,446, महिलाएं 3,140, बालक 274, साधु 130, साध्वी 4, ट्रांसजेंडर 17 और सुरक्षाकर्मी 316। यूं कुल मिलाकर संख्या जो है 4 बजे तक हो जाती है 16,327, जिन्होंने बाबा भोले के दर पर माथा टेका है।

0: संरक्षण के अपडेट्स के लिए हम आपके सेवा में उपस्थित हैं। श्रोतो, आपको बता दें, कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर और आईजीपी कश्मीर ने कश्मीर में चल रही श्री अमरनाथ जी यात्रा के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। क्या कुछ उनका कहना है, आइए आपके साथ सुनते हैं। होंगे
1: श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है कल से शुरू हुई है, उसके संदर्भ में प्रशासन की तरफ से मैं कुछ बातें सभी के ध्यान में लाना चाहूंगा। वैसे तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और ऑफिशियल प्रेस नोट से ये सभी जानकारी और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के द्वारा भी ये जानकारी सभी श्रद्धालुओं को पहुंचाई जा रही है, पर क्लैरिटी के लिए ये जरूरी है कि हम सभी तक कुछ तथ्य सामने लाए ताकि श्रद्धालु उसी हिसाब से अपनी यात्रा को प्लान करें। यात्रा जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल 3 जुलाई से सुचारू रूप से दोनों पहलगाम और बाल्टा वहां से शुरू हुई है और कल और आज कुल मिलाकर के तकरीबन 26,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं और सुचारू रूप से जो है यात्रा दोनों ट्रैक से चल रही है। बोर्ड के द्वारा और प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम यात्रियों के कन्वीनियंस के लिए किए गए हैं, चाहे वो रुकने की व्यवस्था हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो, रास्ते पे रेस्ट शेल्टर्स हो, पानी की व्यवस्था हो, फिल्टर वाटर की व्यवस्था हो, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स की बात करें और पूरे ट्रैक पे जो लाइटिंग के अरेंजमेंट्स हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस का सामना ना करना पड़े। हमें ये समझने की जरूरत है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने श्री अमरनाथ जी यात्रा की एक कैरिंग कैपेसिटी, एक सीलिंग फिक्स की है जिसके हिसाब से ही श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए अलाउ किया जाता है और इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की जो सुविधा है वो 15 अप्रैल से शुरू की गई थी और अधिकतर यात्रियों ने अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कराया है, बैंकिंग चैनल्स के जरिए रजिस्टर कराया है और उसके बाद जो रजिस्टर्ड यात्री जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं उनके लिए विभिन्न फैसिलिटेशन काउंटर्स पे EKYC और RFID कलेक्ट करने की सुविधा भी दी गई है क्योंकि RFID कार्ड मैंडेटरी है इस यात्रा को करने के लिए। लेकिन हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है कि बहुत से ऐसे विजिटर्स और बहुत से ऐसे श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन और बिना पंजीकरण के जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं और जिस वजह से उन्हें कुछ इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ रहा है। उन्हीं के ध्यान के लिए ये कहना और बताना जरूरी है कि सिर्फ जो पंजीकृत यात्री हैं, जो रजिस्टर्ड पिलग्रिम्स हैं, उन्हीं को ही RFID कार्ड की सुविधा और यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी क्योंकि तत्काल का कोटा बहुत लिमिटेड रहता है और वो उस पर निर्भर करता है कि कितने पंजीकृत यात्री यात्रा के लिए नहीं आते हैं, तो उसी हिसाब से ही कुछ लिमिटेड लोगों को तत्काल के कोटे के जरिए यात्रा की सुविधा उपलब्ध रहती है। तो आज मैं आप सभी की तरफ से, आप सभी की मीडियम से ये यात्रियों को बताना चाहूंगा कि जो जो भी यात्री बिना पंजीकरण के कश्मीर पहुंचे हैं उन्हें कुछ दिन इंतजार, कुछ दिन वेट करने की जरूरत है क्योंकि अभी उन्हें RFID कार्ड की सुविधा या यात्रा करने की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है क्योंकि जो पहले से रजिस्टर्ड पिलग्रिम्स हैं सिर्फ उन्हीं को यात्रा की जो सुविधा है वो उपलब्ध की जा रही है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जिनकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो आगे के कुछ दिनों की है, आज के या आने वाले 2-3 दिनों की नहीं है। मान लीजिए किसी ने 15, 20 या 25 जुलाई की किसी की रजिस्ट्रेशन डेट है तो वो भी एडवांस में यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द यात्रा कराई जाए। उनके लिए भी हमारा यही संदेश रहेगा कि यात्री केवल अपनी रजिस्टर्ड डेट पर ही यात्रा करें, ये हमारा सभी से अनुरोध है ताकि किसी प्रकार की किसी को इनकन्वीनियंस ना हो। और उसके अलावा जो फ्यूचर में, भविष्य में भी यात्री यात्रा करना चाहते हैं वो पहले अपना ऑनलाइन पंजीकरण जरूर करवाएं और उसके बाद ही वो RFID कार्ड हासिल कर सकेंगे और आगे से आगे यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा जितने भी लोग पहुंच रहे हैं और जो बोर्ड की तरफ से जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, वो उनको पहुंचाई जा रही है। कहीं कहीं जगह पर हमारी बोर्डिंग और लॉजिंग फैसिलिटीज भी अवेलेबल कराई जा रही है यात्रियों के लिए ताकि उनको किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो। और हमारा ये प्रयास है कि जितने भी लोग बाबा बर्फानी के दर्शन या यात्रा की इच्छा रखते हैं उन सभी को यात्रा कराई जाए।

लेकिन उसके लिए उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना है, अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए वेट करना है और पहले से अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम के जरिए सुनिश्चित करना है ताकि उनको यहाँ पर किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना फेस करें। थैंक यू।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के साथ। और आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने चल रही श्री अमरनाथ जी यात्रा के ओवरऑल मैनेजमेंट और ज़मीनी हालात का जायज़ा लेने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने तीर्थ यात्रियों से निवेदन किया है कि अपने अपने स्थानों से ही ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही अपना RFID कार्ड हासिल करें और उसके बाद ही यात्रा का प्रारंभ करें।

एक मेगाहर्ट्ज पर डीटीएच की आराधना सर्विस एवं मोबाइल ऐप अमेज़न एयर की आराधना चैनल पर भी हम उपस्थित हैं आपके लिए। तो आपको बता दें कि आरती के समय, आरती का समय जो हो रहा है, कुछ ही देर में आपके लिए आरती पेश करेंगे जो बालतल में रिकॉर्ड की गई है। आइए हम सभी आरती का आनंद लेते हैं।

0: श्रोताओं, इसके साथ ही हमारी आज की सभा समाप्त होती है। आपको बता दें, श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ पालतल में हमारे साथी इंजीनियर्स इंद्रपाल सिंह और समीर अहमद भट्ट। मैं आपकी साथी उद्घोषक शाहीन ऋषि और मेरे साथ उद्घोषक साइका सलीम। इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूक वानी, श्री सुरेश चंद मीना और श्री गुलाम रसूल आखून।
1: और प्रातः 7 बजे श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण लिए आपकी सेवा में दोबारा उपस्थित होंगे। जब तक के लिए
0: शुभ यात्रा, शुभ रात्रि, जय हिंद।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण गंगा पार केवट को उतराई देना चाहते हैं, परंतु केवट अपने प्रभु से सहज भाव से उतराई न लेने की भावना प्रकट करते हैं।

गंगा पार होने के पश्चात भगवान प्रसन्न भाव से केवट को विदा कर भारद्वाज आश्रम संगम नगरी पहुंचते हैं, जहां राम, सीता, लक्ष्मण व भक्तगण स्नान, ध्यान, पूजन, भजन और कीर्तन कर रहे हैं।

भरद्वाज आश्रम से भगवान चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां कुछ आदिवासी स्त्रियां मिलती हैं और सीता से प्रश्न करती हैं। सीता जी लजाकर कुछ इस तरह कह उठती हैं।

उधर भरत जी अयोध्या से प्रभु राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं और राम जी से अयोध्या वापस चलने की प्रार्थना करते हैं।

राम जी की आंखें भर आती हैं और अपनी खड़ाऊ भरत जी को देते हुए अयोध्या की गद्दी संभालने के लिए वचन लेते हुए विदा करते हैं।

अर्थात सिद्ध पुरुषो, गंधर्वो, यक्षो वगैरेथी, असुरो अने अमरो देवोथी सेवाता सिद्धि आपनारा ते सिद्धिदात्री देवी अमने तमने सर्वने सिद्धि आपनारा था। भारतीय दार्शनिक धारा प्रमाणे मुक्ति के मोक्ष ने एक मोटी सिद्धि कहेवामां आवे छे। एथी माताजी ने प्रार्थना करिए कि हे भगवती परांब, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका, सूर्यमंडल अंतर्गता, जगद बीजा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवतात्मिका परांबा, परांबा सिद्धिदात्री, अपने अमे मोक्ष माटे प्रणाम करी। सिद्धिदात्री देवी नो आराधन करी त्यारे देवी मात्रनी आराधना नो सौंदर्य लहरी नो आ एक श्लोक शंकराचार्य जी नो स्मृति पथमा आवे छे।

उच्चारण अपना जप रूप बनो। जे कोई लेखन के हाथनी क्रिया उठाई छे ए हे परमेश्वरी अपनी अर्चनात्मक मुद्रा बनो। मारी गति भ्रमण अपनी प्रदक्षिणा बनो। शयन आसन आदि क्रियाओं अपना यागनी यजन कर्मनी आहुति रूप बनो। अमारी सुख सामग्री आपने थतूं आत्मार्पण बनो। अने अमारी कोई पन शारीरिक के मानसिक क्रिया अपनी सप्रिया आराधना बनो।

और इस संसार सागर से तारने वाले सिर्फ एक हैं, सद्गुरु साहिब, जो ये सत्य जान जाते हैं वे भव सागर से तर जाते हैं।

जासुकों मुनि वलटे सुर नर करें विलाप सो सुख सहजे पाइए सदगुरु संगतिया। एक जीव है एक नाम है एक है साहिब प्यार।

साहिब तेरी साहिबी घट घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। एक माता एक पिता

मन मक्का दिल द्वारे का काया काशी जान दस द्वारे का देहरा तामे ज्योति बिछान ईश्वर अंश जीवा विनाशी।

कोटि नाम संसार में किंते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है बिरला जानी कोई, साधक साधे साध न पावे।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

रामायण या पौराणिक प्रसंग सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।